इंडोनेशिया उन्होंने भी एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाया है और उसके तहत 15 साल से कम के बच्चों के लिए टोटली सोशल मीडिया साइट्स बंद कर रखी है। 13 से 15 में भी उन्होंने लिमिटेशन रखी है कि अगर बच्चे को सोशल मीडिया साइट का इस्तेमाल करना है तो वो भी अंडर सुपरविजन कोई ना कोई बच्चे के आसपास होना चाहिए ताकि वो कोई भी इस तरह की एडल्ट साइट ना खोल लें या कोई ऐसा कंटेंट ना देख लें जिससे उसके ऊपर कोई बुरा असर पड़े। तो आप समझिए कितनी स्ट्रिक्टनेस है ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज में भी। और अब चीन की अगर हम बात करें, वो तो हमारा पड़ोसी ही देश है, तो चीन में तो देखिए 18 साल तक बच्चों के लिए वहां पर सोशल मीडिया पूरी तरह से बंद है और उनके सिलेबस में कोडिंग पढ़ाई जाती है बच्चों को, आप सोचिए, फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और वहां पर माँ बाप जो है वो बच्चों के हाथ में उन्हें चुप कराने के लिए मोबाइल नहीं देते बल्कि उन्हें मिसल्स देते हैं, उनसे फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं, उनसे जूडो और छोटी छोटी जितनी भी एक्टिविटीज की क्लासेस होती हैं वो उनसे कराई जाती हैं ताकि उनके बच्चे भविष्य के लिए स्ट्रांग बने। तो ये देखिए कितना सोच का अंतर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने साथी हमारे सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को यूट्यूब और जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं वो एंटरटेनमेंट जिसे मानते हैं वो आजकल आफत बन गई है, तो इससे बचा के रखे। माना दुनिया हाथों में है लेकिन उसे कैसे चलाना है ये भी हमें ही सीखना होगा और बच्चों को सही दिशा में भी ले जाना होगा, क्योंकि बच्चों को अगर हम सही तरह से गाइड करते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने का भरपूर प्रयास करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम, कौन सा जी हाँ, फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है दोस्तों। ip@radiodelhi.gmail.com पर आपकी मेल का इंतजार है।

बम बम बोले मस्ती में डोले, बच्चों के बचपन में तो मस्ती होनी ही चाहिए। वैसे तो आप बड़े होके भी मस्ती कर सकते हैं, लेकिन बचपन के लिए जो बच्चा है उसकी बचपन को बचाए रखने के लिए ये मस्ती बहुत जरूरी है। और आज हम मोबाइल देकर उनकी इस बचपने को ही, उस मस्ती को ही मार दे रहे हैं। और इसके लिए सच में इसके लिए हम और पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं, घर के सदस्य जिम्मेदार हैं, जो अपना पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों के हाथ में थमा देते हैं मोबाइल। तो भाई मोबाइल से बनाएं दूरी और बच्चों की खिलखिलाहट, उसकी मुस्कान को हमेशा बचा कर रखें। और ये जिम्मेदारी हम सब की है। कहते ना कि आप अगर परिवार बनाते हैं तो उसको सहेजना और उसको सही दिशा में ले जाना ये हम सबकी ही जिम्मेदारी है। यही सोचकर कि आप अपने परिवार को संभाल सकते हैं तभी आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। अभी हमने चीन का उदाहरण दिया, ऑस्ट्रेलिया का दिया, यूरोपियन देशों के उदाहरण दिए। तो वहां पर लगकर अपने बच्चों को मजबूत बनाया जाता है, फौलादी बना रहे हैं वो अपने बच्चों को, जैसे चीन की हमने बात की। लेकिन हमारे यहाँ तो बच्चे क्या बन रहे हैं अभी, क्या कंटेंट क्रिएटर, और पूछे तो किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं

भाई, वो डिस्ट्रैक्शन है या इंटरटेनमेंट, कुछ भी नहीं, उसका कोई कुछ नहीं मिलता भाई, सब देखा देखी कर रहे हैं। और जहाँ पहले जैसे हमने भी अपने बचपन में बहुत मस्ती किया है, बहुत सारी गेम्स खेली, पिट्ठू गिट्ठी और क्रिकेट खेल लेते थे, फुटबॉल वॉलीबॉल, और गली का क्रिकेट तो सबको सबके लिए फेमस होता ही है, बच्चों का अट्रैक्शन भी होता ही है। और तब आवाज आती थी, चलो चलो भाई, आवाजें आती हैं एक दूसरे को, चलो क्रिकेट खेलने का टाइम हो गया, बहुत हो गया पढ़ाई वढ़ाई, अब थोड़ी देर खेल लेते हैं, और पेरेंट्स भी भेज देते थे। लेकिन अब समय पता क्या है, अगर किसी बच्चे को बोल दे दूसरा दोस्त, अरे आ जाना भाई खेल लेते हैं थोड़ा सा, गाँव में भी, ये शहरों तक की बात सीमित नहीं है बल्कि गाँवों में भी आजकल बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, तो वो पता क्या बोलते हैं, अरे रुक जाओ मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं रील बना रहा हूँ, मैं रील बना रही हूँ तभी आती हूँ, थोड़ा डांस के स्टेप कर कर आ रही हूँ, और कहीं घूमने भी चले जाओ, सच में बच्चे तो बच्चे, बड़ों का भी यही हाल है, कहीं घूमने जाते हैं ना तो उन जगहों का, उन दृश्यों का वो मजा नहीं लेते, उस जगह का आनंद नहीं उठाते, बल्कि रील्स बनाने में लगे रहते हैं भाई। अब आजकल तो ना सच में सबके सिर पर सवार होगी रील बनाना, सोशल मीडिया ने सबके ऊपर जादू कर

सामाजिक सपने उन्हें दिखाएं, लोगों से मिलवाएं, इंटरटेनमेंट जैसे जो पब्लिक आपके सोसाइटी के गांव के जो फंक्शंस होते हैं उनमें उन्हें लेके जाएं, तो मुझे लगता है इस तरह से बच्चों का स्क्रीन टाइम कम होगा और वो भी सोशल भी होंगे, उन्हें मानसिक तनाव भी नहीं होगा। जो आजकल बच्चों को बहुत सारी हम चीज़ें सुनते हैं ना, अरे टेंशन हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो वो सब भी बच्चों को फेस नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, हमारे बहुत सारे साथियों ने हमें मेल भेजा और अब अच्छा लगता है जब वो प्रोग्राम के साथ जुड़ते हैं। तो ऐसा ही मैं सबसे पहला जो मेल शामिल कर रही हूँ वो है सतीश अनेजा जी का। ये लिखते हैं कि सोशल मीडिया की गतिविधियों ने परिवार को दूर कर दिया है। परिवार में 5 सदस्य हैं तो सभी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं, आपसी कोई बातचीत और विचार नहीं होता। बच्चों को सिर्फ समझा सकते हैं कि मोबाइल को थोड़ा कम चलाएं तो बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ बच्चे इसका उपयोग सही भी कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी होती है। जिस तरह से जीने के लिए सांस जरूरी है, उसी तरह से सोशल मीडिया का भी अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। बात आपकी सही है, बस बात इतनी सी है कि कितना इस्तेमाल करना है और कहाँ करना है, कब करना है, ये समझने की। और इसके साथ साथ ही हम एक और संदेश लेंगे धर्मेंद्र छीपा जी का। इन्होंने भी लिखा कि बहुत ही अच्छा विषय है और इन्होंने लिखा कि अगर हम शुरुआत से ही बच्चों में मोबाइल चलाने की आदत न डालें तो बेहतर होगा। वैसे बच्चों में सीमित समय के लिए फोन चलाने की आदत डालनी चाहिए या फिर बच्चों का ध्यान कहीं दूसरी और खेल खिलौने में भी लगानी चाहिए। अब बच्चे क्या कोई भी मोबाइल और सोशल मीडिया से अछूता नहीं है, परंतु एक सीमित समय के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जते, जी हाँ बिल्कुल सही, ज्यादा इस्तेमाल हानिकारक होता है। शरीर और मानसिक स्थिति और दिमाग पर ज्यादा सोशल मीडिया का दबाव एक गलत आदत होती है। और इन्होंने ये संदेश भेजा भोपालगढ़ राजस्थान से, कपिल, ईशान छीपा और पूजा परिहार के साथ।

0: दोस्तों आपको बता दें कि सतीश अनेजा जी का संदेश हमने शामिल किया, उन्होंने चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया था।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो
2: पके पेड़ पर पका पपीता।

कोलकाता से दिल्ली से इन्होंने संदेश भेजा। बीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन और चंडीगढ़ से इन्होंने अपने साथी राहुल खुराना, रचित और केशु खुराना रिधान के साथ भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। ये लिखते हैं कि बच्चों को फोन से दूर रखें, ये बीमारी का घर है। मेरा दोहता है, बहुत पंगे लेता है मुझसे, मोबाइल छीनते हैं, रोता है अगर उससे मोबाइल, ये कहना चाहते हैं कि अगर उससे मोबाइल लेते हैं तो वो बहुत रोता है, सामान को इधर उधर पटकना शुरू कर देता है, क्या करें अपनी मतलब इनका कहना, हम भी परेशान है। तो इसमें तो सबसे अच्छी बात, जैसे हमने आपको बताया है कि फिजिकल एक्टिविटीज में उसे इन्वॉल्व करी, जो एनर्जी उसका, जो ध्यान उसका वहां पर जा रहा है, जो भी इस वक्त सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को जितना फिजिकल एक्टिविटीज में डालेंगे, जब वो ऐसे कर रहा है तो आप उसे कुछ ऐसी गेम खिलाएं, उसे अगर क्रिकेट खेलना पसंद है खिला सकते हैं, कोई ऐसी गेम आप लाएं जिसमें उसे मजा आता है वो खिला सकते हैं, लेकिन फोन को कम से कम इस्तेमाल करने दें, क्योंकि बच्चों की आंखों पर भी असर पड़ता है, स्क्रीन टाइम बढ़ता है, तो सोचने समझने की भी, बड़ों की ही भी, बच्चे तो बच्चे, बड़ों की भी सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है, हम सबकी क्रिएटिविटी कम हो रही है। लोगों को लगता है कि AI झट से काम कर देती है, लेकिन आपने कभी सोचा जिस काम को हम बड़ी शिद्दत से लग लग के रिसर्च कर करके करते थे, सुविधा मिली है, झट से काम होता है, लेकिन हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी पर जरूर असर पड़ा है। और दोस्तों, जो साथी थोड़ा लेट हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम अपनी दोस्त सुषमा के साथ, और आज हमने पूछा कि आपके घर में अगर बच्चे हैं और उन्हें भी मोबाइल की लत लगी है तो आप उन्हें उस लत से दूर करने के लिए क्या करते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो हमने जो आपको बताए टिप्स उन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में डालिए, उन्हें कुछ क्रिएटिविटी के काम सिखाइए ताकि आपके बच्चे जो हैं मोबाइल पर कम से कम समय बिताएं। और रही रील्स और सोशल मीडिया पर छाने की बात, वायरल होने की बात, तो इससे भी बच्चों को बचाएं, उनके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल ना डालें। और एक और संदेश बहुत ही प्यारा सा है, इसे भी ले लेते हैं। रामेश्वर जी ने ये भेजा है, ये लिखते हैं कि इन्होंने नमस्कार भेजा, सादर प्रणाम, तो आपको भी नमस्कार, बेहद बेहद अच्छा लगता है और बेहद अच्छा इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लिखते हैं, इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है वैसे, और इन्होंने ये संदेश भेजा, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा और बाबू कठेरिया के साथ साथ अपने समस्त परिवार के साथ। लेकिन कठेरिया साहब, आपने नहीं लिखा कि बच्चों को फोन की लत से कैसे छुड़ा पाए। और एक अगला संदेश है जो देख रही हूँ, इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। सुदर्शन मुखी जी हैं, इन्होंने अनीता और सिमरन मुखी के साथ संदेश भेजा, शांति नगर सोनीपत से। भारत कुमार हैं, इनका संदेश भी आया है हमारे पास, और ये लिखते हैं कि आजकल एक दूसरे के पास बैठने का रिवाज खत्म हो गया है, और अगर कोई बैठता भी है तो कोई ध्यान नहीं देता, ढंग से बात ही नहीं करता और बस फोन पर लगे रहते हैं। ज्योति और संदीप मक्कड़, मन्नत और भरत मक्कड़ के साथ धर्मवीर के साथ इन्होंने भेजा है ये संदेश, पिंगावाला चौक गोराया जलंधर से। ऐसे ही हमारे और साथी हैं अनूप सिंह जी, इन्होंने भी ये संदेश भेजा, झालावाड़ राजस्थान से, सागर पवार, अनूप और धीरज सिंह के साथ। एक और साथी हमारे बोध राज खोरवाल जी, उनका संदेश भी आया है अपने समस्त साथियों के साथ। दंतरेगी भाटापारा से, छत्तीसगढ़ से संदेश आया हीरामणि वर्मा, पारस मणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा का। और दोस्तों, अभी भी समय है, अगर आप अपने कुछ विचार लिखकर देना चाहते हैं हमारे पास तो आप भेज सकते हैं ipradiodelhi@gmail.com पर। जाकिर हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा, साविश्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और अली जिवा, आयान मंसूरी और यश मंसूरी और नुमेर मंसूरी के साथ। मुंगिशा से भेजा है इन्होंने ये संदेश, बस इन्होंने कहा कि किसी भी पसंद के गीत में हमें शामिल करें। नरेंद्र शर्मा जी का भी संदेश आया कलानौर से, किरण शर्मा और नितिन मयंक शर्मा के साथ। साथ ही साथ हरजिंदर सिंह भाटिया हैं, ये भी हमें भेज रहे हैं, और ये लिखते हैं कि बच्चे मन के सच्चे सुनवा दे। इन्होंने गीत की सुनने की फरमाइश की जमशेदपुर से स्टेशन रोड से, एंजल और सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया के साथ इन्होंने संदेश हम तक पहुंचाया है। स्वर्ण सिंह जी का भी संदेश आया है लोहगढ़ ठाकुरावाला से, गुरनूर, गुरलाल, अविराज और राजदीप जो है इनके साथी, उनके साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया।

जी हाँ, बच्चों को करानी चाहिए मस्ती की पाठशाला, क्योंकि बच्चे जो है वो धूम धड़ाम और मस्ती करते ही अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, अब हमारे जो बहुत सारे साथी हैं उनके भी थोड़े नाराजगी के संदेश आना शुरू हो गए हैं, तो हम किसी भी साथी को नाराज नहीं करना चाहते हैं और उनके मेल को भी साथ साथ में कोशिश कर रहे हैं कि जरूर हम शामिल करें। तो ये जो मैं देख रही हूँ, राजेश शर्मा है, इन्होंने ये भेजा है आदर्श नगर मलौट पंजाब से अपना ये संदेश अपने साथी राज, मीना और योगेश, मैंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा के साथ। और इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कुछ साथियों को शिकायत रहती है, उन्हें लगता है कि शायद हम अपने जो जान पहचान के लोगों ने शामिल करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पंकज शर्मा जी हैं, इन्होंने संदेश भेजा, ये लिखते हैं कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बच्चों का दिया पोहन क्या है ये छोड़कर चाहिए वैसे। हाँ, ये कहते हैं कि बच्चों को अगर हम छोड़ दें उसके अलावा जो है वो बहुत अच्छा है। और मॉडल टाउन करनाल से इन्होंने अपने साथियों सुधीर, नूतन और संदीप और भी इनके साथी हैं, उनके साथ इन्होंने संदेश भेजा है। नीटू मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया ने सबका बेड़ा गर्क कर रखा है और हमारी तो यही तो मानना है। ये कहते हैं कि हम यही मानते हैं और अपने साथियों के साथ इन्होंने खैल बाजार पानीपत से

अक्षय मल्होत्रा गोयल और ननक चंद जी के साथ संदेश भेजा पीयूष गोयल और माफ करिए पीयूष और कोयल और भाविका सिक्का के साथ भी जो रोहतक से इनके साथी हैं उन्होंने उनके साथ भी ये संदेश हम तक पहुंचाया है। निसार अली जी हैं इन्होंने ये उत्तराखंड से भेजा है तेलीवाड़ा से हमें ये संदेश। नौशाद जी ने आलिया और अयान के साथ साथी इनके साथी हैं निसार सलमानी उनके साथ भी ये संदेश हम तक पहुंचाया है। रविंदर मोहन दास जी ने भी किशनगंज बिहार से आशा देवी के साथ संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें। उत्तम कुमार सिंह जंघेल जी हैं ये लिखते हैं कि हम भी अपने 3 साल के नाती हैं हमारे वो भी बहुत मोबाइल देखता है रात में 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मोबाइल चलाते थे। इसको देखकर हम 10 मिनट केवल मोबाइल देखने देते हैं उसके बाद डरावने वाले वीडियो दिखाते हैं वो तुरंत मोबाइल फेंक के आंख बंद करके सो जाता है। देखिए ये टेक्निक तो आपकी सही है लेकिन कोशिश करें कि आप उन्हें डरावने वीडियो ना दिखाकर उन्हें अगर आप अच्छे से कहानियां सुनाएंगे तो बच्चे खुशी खुशी आपकी कुछ शिक्षा भी लेंगे कहानियों से और खुशी खुशी सोएंगे भी डरते हुए नहीं सोएंगे। तो आप अब ये बच्चों को ना जो आपका पोता है नाती है उसको आप यूं डरा धमका कर वीडियो दिखाकर ना करके बल्कि प्यार से छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियां सुनवाकर उसकी बातें सुनकर आप उसे सुलाने की कोशिश करें। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा इंद्रजीत कौर और स्वीटी छावड़ा का भी संदेश आया ये लिखते हैं कि आज मोबाइल फोन बच्चों की पढ़ाई मनोरंजन और जानकारी का साधन बन गया है लेकिन जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल उनकी आदतों और दिनचर्या पर असर डाल सकते हैं। बच्चे मोबाइल में जितना समय बिताते हैं उतना ही समय खेल कूद किताबों परिवार और दोस्तों के साथ भी बिताना उनके लिए जरूरी है। और एक और संदेश ले लेते हैं हमारे साथी हैं इन्होंने भी हमें संदेश भेजा है ये है गुलाबदास माणिकपुरी जी लेवाई छत्तीसगढ़ से राजादास माणिकपुरी और रानी माणिकपुरी के साथ इन्होंने संदेश भेजा है। ये लिखते हैं कि आजकल हर घर में बच्चे मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं जिसका उपयोग उनके लिए रत्ती भर फायदेमंद नहीं है। माता पिता अपने से दूर रहने के लिए हाथ में मोबाइल दे देते हैं और फिर बच्चा खेलने लगता है ये बात बिल्कुल हर माता पिता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। ऐसा हमारे घर में भी होता है लेकिन बहुत कम बच्चे हम ही बच्चे को देते हैं कुछ नया सामान देकर उसका मन भटकाने की कोशिश करते हैं। तो यही तो हम जानना चाहते हैं कि आप भी क्या अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं और यही हम सुनना चाहते हैं कि कम से कम ऐसे लोग हों जो बच्चों के हाथ में मोबाइल दें और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वो खुद समय बिताएं। और ये कहते हैं कि हम बच्चे को मोबाइल देने के बजाय कहीं उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आप अपने बच्चे के साथ समय बिता रहे हैं। राधेश्याम शर्मा जी ने भी संदेश भेजा गांव हांडी खेड़ा सिरसा से हरियाणा से और इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा है। और ये जो आप गीत म्यूजिक सुन रहे हैं ना ये इकबाल फिल्म से है बहुत ही इंस्पिरेशनल गीत है आप जरूर सुने इसको लेकिन कुछ मेल भी हम शामिल करेंगे साथ में। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान और मोहिनी चौहान कल्पित हिमाक्ष का भी संदेश आया है।

मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से भी सुधाकर राजे जाधव जी ने और जगुताई प्रशांत संचित प्रथम सर्वद और हर्षिता प्रणाली देशमुख ने अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। और इसके साथ साथ मैं देख रही हूँ बोधराज खोरवाल जी का भी संदेश आया है। कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश के साथ उत्तम नगर दिल्ली से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। साथ ही साथ चरणदास जी का भी संदेश आया है, इन्हें प्रोग्राम पसंद आया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजू अग्रवाल और केशव प्रियांशी के साथ इन्होंने संदेश भेजा।

दोस्तों भेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का हीरो जांबाज और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों के नाम दिए जो सुनना चाहते हैं, लेकिन दिग्दर्शन और कविता गौड़ का संदेश आया है हमारे पास।

और पंकज शर्मा है, उनका संदेश भी आया है हमारे पास मॉडल टाउन से। इन्होंने संदेश भेजा अपने साथियों के साथ और ये अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं।

हमारे साथी हैं बिलाई घर छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन, हेमलता डिंपल देवांगन। इन्होंने संदेश भेजा और ये लिखते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल क्यों नहीं देना चाहिए। ये बताते हैं कि आजकल मोबाइल बच्चों के मनोरंजन का आसान साधन बन गया है, लेकिन खेलने के लिए लगातार मोबाइल देना बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक असर डाल सकता है। जैसे कि आंखों पर असर पड़ता है, उनकी एकाग्रता प्रभावित होती है, नींद खराब हो सकती है, शारीरिक गतिविधि भी कम होती है, सामाजिक विकास उनका प्रभावित होता है और उनकी जो आदतें हैं या जो दूसरी निर्भरता है वो भी बदलती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि बच्चों को किताबें पढ़ना, चित्रकारी, पहेलियां, संगीत और मैदानों में खेलने के लिए जाना, पार्क में घुमाना, संगीत सुनाना बच्चों को वो सिखाना और परिवार के साथ मिलजुल कर और रिश्तेदारों के साथ भी मिलजुल कर रहना सिखाना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें बताया है हमारे साथी रोशन देवांगन जी ने। ये संदेश भेजा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत सारे उन्होंने टिप्स भी दिए पेरेंट्स के लिए। मोहम्मद सईद आवासी जी का संदेश आया है ऊपरकोट मोहल्ला चुखंटी बुलंदशहर से। इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपना संदेश हम तक पहुंचाया है। इसके अलावा हम देख लेते हैं, हमारे कोई साथी अगर छोटा है तो उसे जरूर शामिल करेंगे। सीताराम कांगड़ा जी का भी आया है संदेश एकता कॉलोनी रोहतक से, इन्होंने अपने साथियों के साथ संदेश भेजा। रेडियो लिस्नर क्लब से भी हमारे पास संदेश आया और ये लिखते हैं कि बच्चों से मोबाइल अचानक छीनने के बजाय धीरे धीरे उसकी आदत जो है वो कम करें और एक निश्चित समय तक ही बच्चों को फोन दें। और देख लेते हैं और कौन से साथी हैं हमारे जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं।

दोस्तों, नन्हे बच्चों की आंखों में सपने दीजिए, उड़ान दीजिए, उन्हें नए सपने सिखाइए, क्रिएटिविटी सिखाइए। और ये तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मैसेज आया हमारे पास मशरूर हसन और मस्कीन दादाजी का, हम ले चुके हैं। फारूक अली खान जी का, आर कुमार जो है, यानी ये है हमारे साथी वडिंग खेड़ा पंजाब से, उन्होंने भी संदेश भेजा है। और इसके साथ साथ चलते चलते शामिल कर रही हूँ अपने दोस्तों के और कुछ मैसेज। रियासत हुसैन, मेहर अरोड़ा और संजय ढींगिया जी का भी संदेश हम तक पहुँचा है। और अनिल

0: मोहन जी ने भी हमें संदेश भेजा है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से उषा मोहन और टिल्लू और मधु नायक के साथ। इसके साथ साथ बसंत अकेला, भारत भूषण और दिलावर खान जी का, राजेश जैन जी का और हमारे और साथी हैं एक जिनका संदेश हम जरूर शामिल करना चाहेंगे, इंद्रजीत जी, इन्होंने भी हम तक अपना संदेश पहुंचाया है। विदा हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो जाते जाते बस यही कहूंगी कि दोस्तों इंटरनेट और सोशल मीडिया आपकी जरूरत है, लेकिन बच्चों का असली बचपन स्क्रीन के पीछे नहीं बल्कि मैदान की ताजी हवा और अपनों के साथ मीठी मीठी बातों में है। तो अपनी दोस्त सुषमा को दीजिए इजाजत, नमस्कार और यही संकल्प आप लीजिए कि डिजिटल दुनिया की चमक दमक से बच्चों को असली दुनिया की चमक ज्यादा दिखाएंगे। नमस्कार, जल्दी ही मिलूंगी अगले प्रोग्राम में। अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संकेत, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस अवसर पर वे नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: और फिर मैंने जो सीखा वो अनुभव आज तक काम आ रहा है। साथियों, वर्ष 2014 में देश ने मेरे दायित्व का विस्तार किया। प्रधान सेवक के रूप में सेवा का दायरा बढ़ा दिया, और तब भी देश के सामने विकराल चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी थी। चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं नजर आती थी। देश का हर नागरिक नया रास्ता खोज रहा था। भारत की इकोनॉमी को लेकर दुनिया कहने लगी थी, इट्स अ गॉन केस। सब ग्रोथ कहीं दिखती नहीं थी, महंगाई आसमान छू रही थी।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि 2001 में इसी दिन श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व

शाह ने कहा कि 2001 में इसी दिन श्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और अल्पविकसित तथा विकासशील देशों के लिए भी बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष का विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के बाहर प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने कहा है कि कश्मीरी गेट और उसके आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित होने की संभावना है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के दक्षिणी तट के पास एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। इस हमले से टैंकर पर सवार 23 भारतीय चालक दल के सदस्यों की जान खतरे में पड़ गई, लेकिन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे अमीर खुसरो की रचना और स्वर अब्दुल हामिद अंसारी जी का, और अब आप सुनेंगे अभिजीत सावंत के स्वर में अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे सबरस। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब प्रस्तुत है सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दिव्यांशु श्रीवास्तव का राग बसंत बुखारी में संतूर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को

अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को केंद्र में रखकर कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पे कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों के कार्यान्वयन, निर्णय लेने में दृढ़ता, पारदर्शिता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की विदेश नीति में पड़ोसी देशों को विशेष महत्व दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन

0: शंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचे के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में लोकसभा सांसद बिप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी ओएसडी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। इस सिलसिले में चंडीगढ़, मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जलंधर में 8 ठिकानों पर छापे मारे गए। इस दौरान लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज सहित कई महत्वपूर्ण सामग्री जब्त की गई है। इनकी जांच की जा रही है। ये कार्रवाई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कल के आदेश के बाद हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर 5.25% से बढ़कर 5.5% हो गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर 5.75% कर दिया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 72,906 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that the trust of the people and the dedication of millions of party workers have been his greatest sources of strength. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that the people's trust accumulated over 25 years and the experience gained during this period are a great asset. The Prime Minister also said that this is the time to set big targets for Bharat. Attributing his entire political journey to the unwavering faith and support of the citizens, Mr. Modi said that the present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है। और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट इंडिया वंस एसोसिएटेड विद डिस्कशंस ऑन पॉलिसी पैरालिसिस इज नाउ इंक्रीजिंगली बीइंग डिस्कस्ड फॉर इट्स ग्रोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। आफ्टर नियरली 3.5 years, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुडे रेज्ड की बेंचमार्क रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स to 5.5% in a bid to tame rising inflation amidst global uncertainties. Announcing the bi-monthly monetary policy, RBI Governor Sanjay Malhotra said, the Monetary Policy Committee, MPC, unanimously decided to raise the policy repo rate by 25 basis points.
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions, developments and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate under the LAF by 25 basis points to 5.5%. Consequently, the STF rate stands adjusted at 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate to 5.75%. The MPC also decided to change the stance to calibrated tightening by a majority of 4-2.
1: The last repo rate hike was in February 2023 by 25 basis points to 6.5%. The rates were unchanged through 2023-24 before beginning its rate cut cycle in 2025. Meanwhile, retail inflation rose to 4.82% in August as compared

स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे घर आंगन कार्यक्रम में। बातों मुलाकातों के इस सफर में मनीषा बोस का प्यार भरा नमस्कार। तो पहले वो बात जो है कार्यक्रम की शुभ शुरुआत, आज का सुविचार। श्रेष्ठ कर्म ही भविष्य की सबसे अच्छी तैयारी है, ये है हमारा आज का सुविचार। दोस्तों, वर्तमान समय हमारे हाथ में होता है, हम क्या सोचते हैं, कैसे प्रयास करते हैं, सब कुछ हमारे आज के प्रयास से तय होता है दोस्तों। इसलिए भविष्य की चिंता में समय गंवाने की बजाय समय का सदुपयोग करना और सही दिशा में कदम उठाना ही हमारे आने वाले कल को सुरक्षित और सुंदर बनाता है। इसलिए वर्तमान में किया गया श्रेष्ठ काम ही भविष्य की मजबूती का सामान तैयार करता है। और हमारा आज का पुरुषार्थ ही कल का भाग्य है, ये हम जानते हैं। इसलिए समय का सदुपयोग करना, सही दिशा में कदम उठाना और आने वाले कल को सुरक्षित और सुंदर बनाने का तरीका, इसके अलावा और कोई सा है नहीं। तो एफएम गोल्ड सुनने की इस अच्छी आदत को आप बरकरार रखें हमारे साथ, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके लिए जानकारी और मनोरंजन का ये सफर जारी रहेगा। इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी

और डिजिटल प्लेटफॉर्म AIR लाइव न्यूज 24/7 पे भी जुड़ सकते हैं आप। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको आज का सवाल। आज आपको बताना है स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि उस आदत से हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास भी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। सोचिए और लिख भेजिए अपने जज्बात fmgold@gmail.com पे। आपके जवाबों का सिलसिला शुरू हो उसके पहले हम सुनते हैं इस खूबसूरत से गीत को।

वक्त फिल्म से आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे इस खूबसूरत से गीत को। और साथियों, निगाहों की चमक आपकी बरकरार रखते हुए अब हम चलते हैं अपने कार्यक्रम के अगले सफर की तरफ। और आज इतिहास के पन्नों में हम लेकर आए हैं दो ऐसी हस्तियों की कहानी जिनकी आज जयंती है। अपनी ताकत और आवाज से आजादी की लौ को जलाए रखने वाली उनमें से एक है महान स्वतंत्रता सेनानी और वीरांगना दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी हम जानते हैं। भगत सिंह को लाहौर से सुरक्षित बाहर निकालने और क्रांतिकारियों के लिए हथियार लाने ले जाने का साहसिक काम करने वाली इस वीरांगना को उनकी जयंती पर शत शत नमन करते हैं। और दूसरी है मल्लिका गजल बेगम अख्तर साहिबा जी, जिनकी जादुई आवाज संगीत जगत के चाहने वालों को ही नहीं बल्कि आजादी के दीवानों को भी अपनी ओर खींचती थी। और विदेशी हुकूमत के खिलाफ अपनी गायकी को हथियार बनाना बेगम अख्तर साहिबा का अंदाज था। गजल, ठुमरी, दादरा और शास्त्रीय संगीत के जरिए अपने सुरों को अभिव्यक्त करने वाली बेगम अख्तर की गजल गायकी ने उन्हें मल्लिका ए गजल बनाया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। उनकी जयंती पर हम उन्हें भी नमन करते हैं। और फिर से आपको याद दिला देते हैं दोस्तों, आज का सवाल, जिसमें आपको बताना है आज कि स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की हमें जरूरत है, आपको क्या लगता है। और लिख भेजिए हमें अपने विचार, अपनी बात fmgoldga@gmail.com पर।

तेरे मेरे सपने। इस फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आपने इस खूबसूरत से गीत को सुना। दोस्तों, सौंदर्य को चार चांद स्वर्ण आभूषण लगाते हैं और शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने में परिधान अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं, खासकर आरामदायक परिधान। और कपड़ों को आरामदायक बनाने में जिस प्राकृतिक स्रोत का योगदान सबसे ज्यादा है वो है सफेद सोना, यानी कि कपास। और जानते हैं आज इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आज है विश्व कपास दिवस। साल 2019 में विश्व व्यापार संगठन ने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों, और 2021 से इस दिन को आधिकारिक रूप से मनाया जाने लगा। और चूंकि हम दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक हैं और कृषि प्रधान हमारे देश में बहुत से किसान कपास की इस प्राकृतिक खेती से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, इसलिए आज का दिन हम इस सफेद सोने को समर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं दोस्तों कि स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद कपास से बने सूती कपड़े हल्के होते हैं, उसी के साथ साथ वो हमारी त्वचा के तापमान को भी नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। इसके जो प्राकृतिक रेशे होते हैं वो त्वचा के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए नवजात शिशुओं को सूती के कपड़े पहनाए जाते हैं, है ना? याद कीजिए, हम सब ऐसा ही करते हैं ना। और न सिर्फ कपड़े बल्कि रुई, बैंडेज, पशुओं का चारा, तेल, गद्दे, कुशन, अखबार, कागज और यहाँ तक कि हमारी नोट, सब कुछ कपास से ही तो बनता है ना? तो प्लास्टिक और सिंथेटिक के इस दौर में पर्यावरण अनुकूल कपास के प्राकृतिक रेशे और उसके फायदों के लिए जागरूक करना ही आज के दिन का उद्देश्य है और यही हम कर रहे हैं। तो आइए प्रकृति के इस अनूठे उपहार को हम ज्यादा से ज्यादा अपनाएं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए आगे बढ़ाएं।

साथियों, इस खूबसूरत से गीत को आप सुन रहे थे आनंद महन फिल्म से और गायक थे यशुदास। और साथियों, अब हम बात करते हैं अपने आज के प्रश्न में आए हुए उन हमारे साथियों के बारे में जिन्होंने अपने संदेश लिख भेजे हैं हमें। और आपको याद दिला दें, हमारा प्रश्न है कि स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की जरूरत है। और इस बारे में हमारे जो श्रोता साथी हैं जिन्होंने अपने संदेश हमें लिख भेजे हैं, उनमें हमारे पहले श्रोता साथी हैं नवीन भाटिया जी, और उन्होंने अपना विचार लिखा है कि भाई, रोड पे कचरा ना फेंकने के लिए डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए और यही बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हमारा अगला जो संदेश है वो है चरणदास जी का। उन्होंने कहा है कि ये काम सचमुच में बहुत अच्छा है और ये जागृति के लिए आप लोगों को हम धन्यवाद कहते हैं कि आप इस तरीके के विषयों को सामने लाते हैं। एफएम गोल्ड की तारीफ कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें सफाई का ध्यान रखना चाहिए और सफाई के साथ साथ हमें आसपास के वातावरण को भी विशेष रूप से साफ रखना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आपके इन विचारों के साथ आपने ये भी बोला है कि 30 साल से अपने घर घर के बाहर चौक में आधा घंटा रोजाना वो सफाई करते हैं और ऐसा करके वो आसपास की गंदगी को जहां भी दिखती है उसे दूर करते हैं। और देखिए कितना सुंदर भाव है इनका। बहुत शुक्रिया। इस तरीके से अगर हर नागरिक सोचने लगे तो आसपास स्वच्छता ही स्वच्छता दिखने लगे, है ना। और अब हम बात कर लेते हैं अपनी उस बात के बारे में जो है एक विशेष प्रेरणा भरी कहानी। साथियों, प्रेम के कितने ही रूप हमारी धरती को संवारते आए हैं, वैसे ही वात्सल्य से भरे प्रेम की एक कहानी आज मैं आपको बता रही हूँ। वो है ओडिशा प्रांत की समाज सेविका आभा रानी चौधरी की। उनके वात्सल्य प्रेम की कहानी शुरू हुई 2003 में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, जब वो ओडिशा के झाड़पारा जेल के कैदियों से मिलने गई तो वहां उन्होंने देखा उनके साथ उनके मासूम बच्चे बैठे हुए हैं जो बिना किसी कसूर के जेल की चार दीवारी में रहने को मजबूर हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि बिना किसी जुर्म के इन बच्चों का बचपन जेल की इन चार दीवारी के बीच दम तोड़ रहा है और इसी

घटना ने उनके मन में बच्चों के प्रति असीम वात्सल्य को भरा। उन्होंने भुवनेश्वर में मधुरमय आदर्श शिक्षा निकेतन की शुरुआत की और उन बच्चों को और ऐसे ही तमाम बच्चों को सहारा देने का काम शुरू किया। उनके लिए एक अच्छा घर, उनके लिए बेहतर संस्कार और अच्छी शिक्षा और साथ ही साथ माँ का प्यार दुलार, ये सब कुछ देने का प्रयास वो कर रही हैं। पिछले 23 सालों में 200 से ज्यादा कैदियों के बच्चों को आभा रानी ने पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर खड़ा करने का काम किया है और मातृत्व से भरी उनकी मातृमयी सोच ने सलाखों के पीछे सिसकते बचपन को एक नया सवेरा दिया है। क्योंकि सच ही कहा है किसी ने ना कि हो सके तो किसी का सहारा बनो और डूबती हो कष्टियां तो किनारा बनो। तो चलिए खूबसूरत सा गीत हम सुनते हैं।

बुलंदी फिल्म से आप आशा और किशोर जी को सुन रहे थे इस फिल्म में और इस प्यारे से गीत में। साथियों, हम जो भारतीय हैं वो संस्कृति के साथ जीवन को जीते हैं और इसीलिए हर मौसम में हमारे यहाँ त्योहार और पर्वों की झलक और उनके पीछे गहरे जीवन दर्शन का संदेश हम देखते हैं, है ना। और यही जीवन मूल्य जो है वो हमें संस्कारों से बांधते हैं। जैसे इन दिनों हमारे पूर्वजों और पितरों के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करने का अवसर ये श्राद्ध का समय चल रहा है, जिसे हम पितृ पक्ष भी मानते हैं। पूर्वजों द्वारा मिले जीवन संस्कारों और उनके उपकारों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के साथ उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए इन दिनों हम ये दिन मना रहे हैं, यानी कि पितृ पक्ष मना रहे हैं। श्राद्ध का मतलब ये होता है दोस्तों कि श्रद्धा से किया जाने वाला पावन कर्म। और हम जानते हैं ना कि जीवन चक्र जो है वो जीवन के नियम से जुड़ा है और ये जो समय है श्राद्ध का वो हमें पूरी तरह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव सिखलाता है। और तभी तो इन दिनों हम अपने पूर्वजों को अर्पण और तर्पण करने के बाद ही अपने लिए कुछ सोचते हैं। अर्पण तर्पण का अंश जो हम अपने पितरों के लिए निकालते हैं वो पशु पक्षी और जीवों को अर्पित करते हैं ताकि उनकी तृप्ति के द्वारा हमारे पूर्वज संतुष्ट हो सकें और हमें अपना आशीष दें। भागती दौड़ती जिंदगी में भाई हमारे पर्व हमें कुछ पल रुककर जीवन को समझने और संवारने का अवसर देते हैं। इसीलिए अर्पण तर्पण के संस्कारों को बांधने वाला जो श्राद्ध पक्ष है वो अपने पूर्वजों की याद में और सभी जीवों के प्रति श्रद्धा और उनकी तृप्ति की बात में हमें जीवन का गुर भी सिखलाता है।

काजल फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप इस खूबसूरत से गीत को। और साथियों, हमारा आज का सवाल, जिसके लिए बहुत सारे संदेश हमारे पास आ चुके हैं, और वो सवाल है, स्वच्छता की कौन सी आदत अपनाने की जरूरत आपको लगती है, जिसे आपने अपनाया है और आपको लगता है कि दूसरे भी इससे प्रेरित हों। और इसके लिए संदेश हमारे पास है गौरीशंकर वर्मा जी का, जिन्होंने लिखा है कि भाई, सफाई की शुरुआत घर से होती है। अगर हम खुद घर में सफाई रखेंगे तो इसका असर बच्चों पर पड़ेगा, और घर और बाहर दोनों का ध्यान अगर हम रखेंगे सफाई के लिए तो ये हमारी आदत बन जाएगी, और स्वच्छता शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तो ये बहुत सुंदर सी बात इन्होंने लिखी है गौरीशंकर जी ने नांगलोई से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में आपके इस इतने बेहतरीन संदेश को भेजने के लिए। और वैसे ही हमारे पास है संदेश अफरोज शेख का, जो सुपौल बिहार से लिखते हैं, अगर आप बाहर कुछ भी खा पी रहे हैं तो जो बोतल है या जो थैलियां होती हैं वो आप अपने बैग में डाल लें या फिर पॉकेट में डाल लें। हम सब की यही आदत अगर है तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, ऐसा वो करते हैं। भाई कितनी सुंदर बात है ना, और जागरूकता की भी बात है कि अगर हम ये सब करें तो अपने आसपास के वातावरण को भी साफ और सुंदर बना सकते हैं। उसी तरह हमारे पास एक संदेश है मंटू शर्मा जी का, और इन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल जाता था तब सबसे पहले मैं मेरी क्लास की पूरी सफाई करके ही पढ़ाई शुरू करने की आदत थी उस समय सभी की। तो ये कितनी अच्छी बात है, एक एक किताब को हम प्लास्टिक कागज से डिजाइन पेपर से ढक के रखते थे ताकि बारिश में वो भीगे ना, फटे ना, और इस तरह हम अपनी कॉपी और किताबों को भी स्वच्छता के साथ जोड़ के रखते थे। कितनी अच्छी बात आपने लिखी है, और इन्होंने लिख भेजा है हनुमानगढ़ राजस्थान से अपना ये संदेश। सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने कहा है, स्वच्छता सोच की आदत बनाओ और सब कुछ स्वच्छता रहे ऐसा गाओ। तो क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसे बनते हैं, और बिजली, पानी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे बहुत सारी सोच समझकर हमें इन्हें उपयोग करना चाहिए ताकि हमारे आसपास कोई भी गंदगी ना फैले, और कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में ही डाला जाए। ये सारी बातें इन्होंने बताई हैं जिससे हमारा जीवन सुंदर और साफ हो सकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है, और इसी तरह जीवन के साथ जुड़ी हुई जो स्किल है उसकी बात अब हम अपने अगले सेगमेंट में आपको बता रहे हैं, क्योंकि सूचना और तकनीक के इस युग में जब हम एआई की बात करते हैं तो कंप्यूटर का ज्ञान तो मानिए जैसे अनिवार्य ही है ना। फिर चाहे वो छात्र हो या अभिभावक, सभी के लिए तकनीक जो है वो जरूरी है। स्कूल के प्रोजेक्ट्स, ऑफिस के काम, सरकारी दस्तावेज, आवेदन करना हो कहीं पर, या ऑनलाइन पेमेंट करना हो, डिजिटल शॉपिंग, छोटी बड़ी हर बात में डिजिटल स्किल शामिल है। लेकिन सिर्फ मोबाइल के प्रयोग से ही इसमें महारत नहीं मिल सकती, इसलिए इसके लिए कौशल के लिए शैक्षणिक योग्यता का अगर हम उपयोग करें, जिसके लिए अलग अलग कोर्स हमारी सरकार करा भी रही है, और उसी के साथ साथ कंप्यूटर को चलाना हम सीखते जाते हैं जो हमारी कमाई का भी रास्ता बनता है। तो चाहे कोई किसान हो या कोई दुकानदार, या कोई छात्र हो या गृहिणियां, डिजिटल कौशल से दुनिया के किसी भी कोने से कमाई करके सभी स्वावलंबी बन रहे हैं, है ना। तो अपने ही फोन से ऑनलाइन फॉर्म भरना, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना, अपनी फसल और प्रोडक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेचना, और बैंकिंग को सुरक्षित रूप से यूपीआई में चलाना, वो भी बिना कहीं गए। तो डिजिटल स्किल डिजिटल इंडिया जैसे अभियान का हिस्सा बनने वाला हर व्यक्ति जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहा है। तो कहीं भी किसी भी बंधन से मुक्त होकर आप अपने इस कौशल के साथ आत्मनिर्भरता की डग भरिए, हम यही चाहते हैं।

साथियों, दिल्ली और एनसीआर की लाइफलाइन बनी मेट्रो का सफर हम में से कई लोग रोज करते होंगे, है ना, क्योंकि दिल्ली मेट्रो आपकी अपनी ग्राहक सेवा और विशाल नेटवर्क के लिए हम सब के लिए बहुत ज्यादा विश्वसनीय बन चुकी है। हम में से अधिकांश लोग समय की बचत, किफायती कीमत और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो में सफर करते ही हैं। इसलिए दिल्ली मेट्रो के हर अपडेट के बारे में जानकारी हमारे सफर को और आसान बनाती है। इसीलिए आज हम बात करते हैं AI चैटबॉट वर्चुअल सारथी ऐप के बारे में। दिल्ली

कल्चरल कॉरपोरेशन इस ऐप ने दिल्ली की रफ्तार में डिजिटल सुविधा को नई उड़ान दी है और इस डिजिटल साथी ने इसके साथ QR टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई है, वर्चुअल स्मार्ट कार्ड की सुविधा दी है, यात्रा संबंधी सभी जानकारी, मेट्रो स्टेशन की जानकारी, यहां तक कि स्टेशन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की उपलब्धता जैसी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बारे में भी, यानी यात्रा की प्लानिंग से लेकर मंजिल तक हर बात की जानकारी हमें मिलती है सारथी ऐप के जरिए। अगर आपने अभी तक इसका लाभ नहीं लिया है ना, तो अब चूकिएगा मत। बस इस ऐप को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में खोलिए और अपनी आवाज में या फिर टाइप करके अपने गंतव्य संबंधित प्रश्न को आप पूछ सकते हैं यहाँ। जैसे सबसे छोटा रूट कौन सा है, आपके गंतव्य का किराया कितना होगा, आपका स्मार्ट कार्ड कैसे होगा रिचार्ज, यहाँ तक कि आपके नजदीकी स्टेशन के आसपास घूमने या दर्शनीय स्थलों की जानकारी भी ये सारथी ऐप आपको दिलाता है। तो डिजिटल होता इंडिया और स्मार्ट बनती दिल्ली में आसान और सुगम सफर जब भी हो करना हमारी बताई इस जानकारी को अमल में लेकर लुत्फ उठा सकते हैं आप।

लता मंगेशकर की आवाज में चोर पुलिस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे दोस्तों। और अपने आसपास की चीजों को हम आपको अगर बांटने की बात बताएं तो कैसा रहेगा? जैसे हम अगर आपसे कहें पैसा आप देते हैं तो आपका वॉलेट खाली हो जाता है, और अगर कोई चीज किसी को देते हैं तो सामान कम हो जाता है। लेकिन एक चीज ऐसी है जो ऐसे गणित से बिल्कुल दूर है, और जानते हैं वो क्या है? वो है हमारी खुशी। वो कहते हैं ना, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। तो इस सुंदर भाव से अगर हम अपने आसपास की चीजों को देते हैं तो उस देने के भाव में छिपा जो सुख है वही सच्चा सुख है। इसीलिए छोटी छोटी चीजों से खुशियों को समेटने की आदत हमें आनी चाहिए। किसी की तारीफ करना, किसी का हौसला बढ़ाना और किसी को देखकर प्यारी सी मुस्कान दे देना, बस इससे पूरा दिन बन जाता है। तो इस खूबसूरत सी बात के साथ हम आज अपने कार्यक्रम में आपके लिए ये अंतिम गीत ऐसा ही कुछ आपको सुना रहे हैं।

0: 당근.
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनसेवा को अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया है और राजनीति को राष्ट्र सेवा का माध्यम माना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। श्री शाह ने सभी से इस यात्रा में शामिल होने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में

जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना, वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना और वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लक्ष्य की दिशा में विकास को गति देना आवश्यक है। भारत ने जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान में आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई पर इस्लामिक सहयोग संगठन की टिप्पणियों को खारिज किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6ठी समिति में लोकसभा सांसद विप्लव कुमार देव ने कहा कि टिप्पणी करने वाले पीड़ित और अपराधी के बीच अंतर नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से अपने लोगों की

0: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय हुआ है अगले कार्यक्रम यानी कि आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं ये संदेश।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आदाब, सत श्री अकाल, स्वीकार कीजिए आपकी होस्ट और आपकी दोस्त रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम का जो आज हम लेकर आए हैं, जो फिल्म लेकर आए हैं, वो है 1980 के दशक की वो फिल्म जिसमें एक ऐसे डांस फॉर्म को जन्म दिया था जो अपने आप में एक मिसाल बन गई। दूसरी तरफ मिथुन दा का डांस मूव्स और ऊपर से बप्पी दा का संगीत, बस ये तीनों का जो मेल है ना, उसने एक अलग ही हिस्ट्री बना दी। जी हाँ, अरे अरे, लगता है मैं नाम बता दूंगी इस जल्दी जल्दी में, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रहना है तो कुछ तो आपको कहना है। जी हाँ, चलिए श्रोताओं जल्दी से फोन उठाएं और हमें बताएं कि आज हम किस फिल्म को लेकर आए हैं, किस फिल्म की कहानी, किस फिल्म के रोचक किस्से और गीतों को आपके सामने पेश करेंगे। तो जो हमें सबसे पहले सही जवाब के साथ मैसेज करेगा वो होगा हमारे आज का फेवरेट श्रोता। जी तो चलिए इस फिल्म से जुड़े सुनते हैं ये वाला गीत। और मुझे पता है कि हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं और मेरे जो मैंने जो गेस्ट करने का दिया है ना आपको, तुरंत आप जवाब देंगे, तो इंतजार रहेगा आपके जवाबों का। और आप हमें मेल करेंगे ipradiodelhi@gmail.com। जी हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो जल्दी से हमें मैसेज कीजिए और फेवरेट श्रोता बन जाइए।

बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, यानी कि आपको भी हमारी याद आ रही है और हमें भी आपकी आ रही है, तो क्या बात है। सबसे पहले जो मैसेज किया है वो है डोल राणा जी ने। जी हाँ, डीबी राणा जी, नेहरू विहार दिल्ली से आप हमारे आज के फेवरेट श्रोता घोषित हो चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे हमारे फेवरेट श्रोता सभी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ये गेम होना बहुत जरूरी है, इससे कनेक्शन हमारा आपका जुड़ता है। जी हाँ, तो आज हम लेकर आए हैं 1982 की रिलीज हुई फिल्म डिस्को डांसर। तो ये है कहानी एक ऐसे लड़के यानी कि अनिल की, जिसके पास दौलत नहीं है, शोहरत नहीं है, मगर उसके पास है एक सपना। जी, और इसके निर्देशक जो थे वो है बब्बर सुभाष जी, और डिस्को संगीत दिया है बचबीर लहरी जी ने, और मुख्य भूमिका जो निभाई थी जिम्मी जी, अनिल के किरदार निभाया मिथुन चक्रवर्ती साहब ने। कहानी शुरू होती है उसकी माँ के संघर्ष से। एक अमीर अहंकारी व्यक्ति शर्मा उनकी माँ पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा देता है। अनिल का बचपन गरीबी में दर्द में बीता, बड़ा होने पर एक स्ट्रीट परफॉर्मर बनता है। एक दिन एक प्रसिद्ध संगीतकार प्रबंधक डेविड ब्राउन उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं और उसे एक नया नाम जिमी देते हैं। जिमी अपनी मेहनत और शानदार डांस के दम पर फर्श से अर्श तक पहुंचता है कुछ इस तरह।

तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ गाओ। जी हाँ, रेडियो जिसने अभी अभी ऑन किया है, हम बता दें कि आप वैसे तो रेडियो ऑन करके ही पता चल गया होगा आपको कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं आज। जी हाँ, आज हम लेकर आए हैं डिस्को डांसर फिल्म। जी, और यह कहानी को जब हम किसी जिमी एक शानदार स्टार बन जाते हैं और कहते हैं ना कि कभी कोई

रास्ता आसान नहीं होता। कहानी में मोड़ तब आता है जब इस फिल्म का खलनायक जिमी को के रास्ते के से ना हटाने की कोशिश करता है और उनके गानों में मुश्किलें पैदा करता है। उसकी माँ की दुखद मृत्यु भी हो जाती है। अंत में जिमी अपने गानों और डांस के जरिए खलनायक के सारे षड्यंत्रों को बेनकाब करता है और आखिर में जीत सच की ही होती है। और अब हम सुनते हैं दुनिया भर में धूम मचाने वाला उषा उत्तप और बप्पीदा का ये संगीत गीत खूबसूरत सा। और हमारे जो श्रोता हैं बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे हैं, जो हमें भेज रहे हैं मैसेज, जिन्होंने अनीता जी हमें मैसेज कर रही हैं कि उनका कार्यक्रम सुनती हैं और अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मसूर हसन जी ने हमें मैसेज किया है और इसी तरह से सुदर्शन शाह, स्वर्ण सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज, भरत कुमार, ज्योति, मक्कण, मन्नत, भरत, पिंगा वाला चौक, इन्होंने जलंधर से हमें संदीप जी ने किया है हमें मैसेज, और पूनम गंगेजा जी ने हमें मैसेज किया है, निमित, और इसी तरीके से हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन गौर जी का भी, बहुत बहुत शुक्रिया कविता गौर का, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से जुड़े रहिए और सुनते रहिए हमारा ये कार्यक्रम। अब सुनते हैं ये अगला नगमा।

हाँ, ये कितना खूबसूरत सा सॉन्ग आपने सुना उषा उत्तम और बपीदा की आवाज का। और इसी तरह से इसमें बहुत सारे गीत हैं जो कि मन करता ही सुनते रहना। और अगला जो गीत मैं लेकर आ रही हूँ वो है पार्वती खान जी ने गाया है, और ये गीत अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी पॉपुलर हुआ। कहा जाता है कि रूस में मिथुन चक्रवर्ती और उनके गाने इतने लोकप्रिय हुए कि एक समय रूस को के जो प्रधानमंत्री है उनकी अपनी रैली भी रद्द करनी पड़ी। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। सोवियत रूस में फिल्म में 90 और यानी कि 94 करोड़ की कमाई करी और वहां पे कम से कम 12 करोड़ के टिकट बिके। लगभग 2 करोड़ से 50 लाख के बजट में बनी ये फिल्म वैश्विक स्तर पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया। सोवियत संघ में जबरदस्त सफलता और मिथुन दा की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनको इस किरदार जिमी के नाम से ही पहचाना जाने लगा। कहते हैं ना, कोई भी भारतीय रूस वहां जाता और रूस में जैसे ही जाता तो स्थानीय लोग जो गाना गाते वो ये गाते। क्या गाते सुनते हैं।

जिमी जिमी कितना मस्त ये जो गीत था और सब जगह किस तरीके से पॉपुलर हुआ वो सभी जानते हैं। और हम इस फिल्म के बात कर रहे थे, इस फिल्म के निर्देशक जो निर्माता है बब्बर सुभाष, संगीतकार बप्पी लहरी, गीतकार अंजान और फारूक कैसर, और लेखक थे डॉक्टर राही मासूम रजा और दीपक बलराज विज जी, और प्लेबैक सिंगर आप जानते हैं विजय वेडकर और बहुत सारे पार्वती खान, बपीदा, उषा उत्थप और किशोरदा। तो इन सभी ने अपनी आवाज दी और इस फिल्म को बनाया एक लोकप्रिय इतिहास रचने वाली फिल्म। कहते हैं, कहा जाता है कि फिल्म के निर्देशक ने माता बप्पर जो सुभाष जी थे वो बप्पी दा के घर पहुंचे और संगीत के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। खिड़की के बाहर देखते उन्हें अचानक उनके मन में ख्याल आया कि डिस्को डांसर, बस यही से जन्मा उनका दिमाग में ये नाम कि डिस्को डांसर। और ये देखो कितने पॉपुलर हो गए और हमें बहुत सारे

मैसेज आए हैं, जिसकी मेहर अरोड़ा जी का मैसेज आया है, राजकुमार दूरी जी का, हमें राजकुमार प्रमोद कुमार जी का मैसेज आया फरासी जलगांव से, भारत कुमार का, ज्योति मन्नत मकड़ कमल पिंगा वाला चौक से, उन्होंने जलंधर से किया, सुरेश जादवर का भी हमें मैसेज आया है जादव जी का, और धर्मेंद्र छिप्पा जी का, कपिल ईशान पूजा परिहार, और पंजाब से हरजिंदर जसवीर सीता गीता, और इसी तरह से हमें आर कुमार जी का, पिंकी लवली आरती मिंटू और पंजाब से कर रहे हैं, और फिर इसी तरह से हमें जामुन देवी साहू, बब्लू साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत बेबी, आराध्या हमें छत्तीसगढ़ से मैसेज कर रहे हैं, संदानंद और सदानंद जी हमें कर रहे हैं, सुशीला देवी कर रही हैं, कुमार गौरव जी कर रहे हैं हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तुलसी मस्किन जी ने किया है हमें मैसेज, और बहुत बहुत शुक्रिया शादरा से। फारूक अली खान जी ने हमें मैसेज किया है, मस्किन दादाजी ने मैसेज किया है, उन्हें ये सॉन्ग अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से हमें मैसेज कर रहे हैं मुंडा टोला छत्तीसगढ़ से डोमेंद्र नेतान और गंगेश्वरी नेताम जी ने, और उन्हें इसी तरीके से बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय ढिंगिया जी का हमें मैसेज आया, सुवर्ण सिंह जी का आया, हिमरा हिरमानी वर्मा, कमलकांत गुप्ता, धर्मेंद्र छिप्पा जी का मैसेज आया है, और इसी तरीके से संजय ढिंगिया जी का भी मैसेज आया है, पीएस नावस्कर जी का भी मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी तरह से कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा, और ये सुनते हैं अगला नगमा।

0: तेरे लिए।
1: इशक मोहम्मदी का मैसेज भी हमारे पास आया है और पीएस नावस्कर का रोजी डे कास्ट्रो का मैसेज आया है। सुदर्शन मुखी, धर्मेंद्र जी, तुलसी जी, पीएस नावस्कर, मेहर अरोरा जी और स्वर्ण सिंह, संजय ढींगिया, अनीता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब दोस्तों समय इजाजत नहीं दे रहा कि मैं आपसे कुछ और देर जुड़ पाऊं, तो यानी कि रैना दवर को दीजिए एक ही फिल्म कार्यक्रम से इजाजत। फिर मिलेंगे नए किस्से, नई कहानी, नए गीतों के साथ, और मुस्कुराते रहें, दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट, आपके दिल को दे सुकून, एक ऐसा काम जरूर करें, एक नेक नागरिक बने, दूसरों को माफ करने का दिल रखें और अच्छे नागरिक बनते हुए आगे बढ़ें, और सुनते रहें आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। और अगला जो कार्यक्रम है 2:30 बजे आप जुड़ेंगे अंजू जी से, और उन्हीं के साथ 3 बजे भी आप सुनेंगे मैटिनी मेलोडी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब से कुछ ही देर में सुनेंगे हम पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में समाचार। तो आइए सुनते हैं समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियां ते सख्त मेहनत सदका भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सुपने नूं जरूर पूरा करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रैपो दर नूं 25 आधार अंक वधा के 5.5% कर दिता है। भारत ने जम्मू कश्मीर ते पाकिस्तान विच दहशतगर्द ढांचे विरुद्ध भारत की कार्रवाई ते इस्लामिक सहयोग संगठन OIC दीआं टिप्पणियां नूं रद्द कीता है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत की अफरीका नाल भाईवाली ना सिर्फ वर्तमान लई सगों आने वाली पीढ़ियों लई भी होएगी। रूस के दक्षिणी तट से यूक्रेन वालों एक तेल टैंकर नूं निशाना बना के किए गए ड्रोन हमले च भारतीय जांच दल के 23 मैंबरां नूं सुरक्षित बचा लिया गया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दूरदर्शी नीतियां ते सख्त मेहनत सदका भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सुपने नूं जरूर पूरा करेगा। अज नवी दिल्ली विच विकसित भारत संकल्प सभा नूं संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि भारत जो कदे नीतिगत खड़ोत की चर्चा नाल जुड़िया होया सी हुण अपनी वधदी ताकत अते चुनौतियां दा सामना करन दी योग्यता लई जाणिआ जांदा है। उन्हां कहा कि पिछले 12 सालां विच स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: आज 12 वर्ष बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। तब एक संकट आता था तो भारत की इकोनॉमी हिल जाती, आज संकट आता है तो भारत के सामर्थ्य की चर्चा होती, भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती। तब पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 25 सालों दौरान लोगों तो उन्होंने मिलया विश्वास अते समय दौरान उन्होंने प्राप्त होया तजर्बा उन्होंने सब तो वड्डी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत लई वड्डे टीचे निर्धारित करने का समय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी राजनीतिक यात्रा देशवासियों के टुट विश्वास अते समर्थन का नतीजा है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: उन्होंने कहा कि 2015 तो 2025 के दहाके विच खेतीबाड़ी खेत्र ने आजादी तो बाद सब तो वध निरंतर विकास दर्ज किया है। श्री मोदी ने कहा कि अजिही तब्दीली उदों संभव है जदों इरादा साफ होए ते नीतियां चंगी तरह प्रभाषित होण। श्री मोदी ने कहा कि जदों उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 नूं गुजरात के मुख्यमंत्री वजों सहुं चुकी सी तां उन्होंने कदे सोचा भी नहीं सी कि वह इस मील पत्थर ते पहुंच जाणगे। उन्होंने कहा कि यात्रा लोगों के टुट आशीर्वाद अते समर्थन नाल संभव हुई है। इस मौके ते बीजेपी के राष्ट्रीय प्रधान नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनतक सेवा नूं अपने जीवन का एक उद्देश बनाया अते राजनीति नूं राष्ट्र की सेवा के साधन मानते ने। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी नूं राष्ट्र के 25 साल निरंतर समर्पित अते अणथक सेवा करने की वधाई दी। श्री नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों नौजवानों किसानों ते औरतों ते केंद्रित कई योजनावां लागू कीतियां ने। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 साल की जनतक सेवा नूं एक सुनहरी अते इतिहासक दिन दस्या है। गुरुग्राम विच विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा विच बोलदिआं श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई विच धारा 370 नूं हटाउण, नक्सलवाद का अंत अते देश के बुनियादी ढांचे के विकास वर्गे महत्वपूर्ण काम पूरे किए गए ने। इधर पंजाब विच भी कई थावां ते इस मौके प्रोग्राम कीते जा रहे ने। मोहाली विखे बीजेपी के मुख दफ्तर च सेवा संकल्प यात्रा प्रोग्राम कराया गया अते प्रधानमंत्री दे संबोधन नूं सुनिया गया। इस मौके पंजाब बीजेपी के प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने प्रधानमंत्री के 25 साल के कार्यकाल दौरान गुजरात अते हुण भारत नूं विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बनाउण दी गल करदिआं कहा कि देश हुण विकसित भारत के टीचे वल कदम वधा रहा है। इह खबरां तुसीं आकाशवाणी तों सुण रहे हो। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ

0: आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब किया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की इस जरूरत पर जोर दिया कि वो अपने नौजवानों को हुनरमंद और बाख्तियार शहरी बनाएं। आरबीआई ने चार साल की मुद्दत में पहली बार रेपो रेट में 0.25% का इजाफा करके इसे 5.5% कर दिया है। उसने माली साल 2027-28 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की 7.1% रहने की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और आज भारत ने फिजी में कोप 31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तर इकदाम और पेरिस मुहिदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वक्फ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर के दर्शन किए, मुल्क और इसके 140 करोड़ शहरियों के लिए दुआ की। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने खुद को ज्यादा ताकत देने की दुआ भी की ताकि वो लोगों के लिए खुद को और ज्यादा वक्फ करके दिन रात काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद 25 साल में कायम हुआ है और इस अरसे में जो तजर्बा हासिल हुआ है वो एक अजीम असासा है।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त में पॉलिसी के मफलूज रहने पर मरकूज बातचीत अब भारत की बढ़ती ताकत और मजाहमत पर मरकूज है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सरबराह हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दत कार दो हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल हैं। आज ही के दिन साल 2000 में जनाब मोदी ने पहली मरतबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आजम बने थे। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और इसे सुनहरी और तारीखी दिन करार दिया है। गुरुग्राम में आज विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में दफा 370 की मनसूखी, मानवाजियत का खात्मा और मुल्क के बुनियादी ढांचे को आला मेयार सतह तक पहुंचाने जैसी अहम हसूलियाबियां हासिल हुई हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुहिम के हिस्से के तौर पर मशल जुलूस निकाले जा रहे हैं जिसके तहत नौजवान अफराद सेवा ज्योति यात्रा निकालेंगे और मुकर्रर मकामात पर मशल नस्ब करेंगे। जनाब शाह ने सभी से बड़ी तादाद में यात्रा में शिरकत की अपील की।
1: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी ने गुजरात के सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का इनेकाद किया है। जनाब मोदी के अवामी खिदमत के 25 सालों में पहले गुजरात के वजीर आला और बाद में मुल्क के वजीर आजम के ओहदे का अरसा शामिल है। पूरे गुजरात में यात्रा निकलने के मकामात पर नई दिल्ली से विकसित भारत संकल्प सभा का वजीर आजम का

0: 10% for current financial year. IMD forecasts heavy rainfall over Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And India calls for stronger climate action and faster implementation of Paris Agreement at pre-COP31 meeting in Fiji today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
2: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इम्पोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
2: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
1: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
3: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में

0: बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
1: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने खुद को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री

0: भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग चार वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
2: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2-4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
3: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
4: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
3: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
5: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1,00,000 रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
3: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि

0: बढ़कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 मेगाहर्ट्स और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खदमत है एनसीआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: हो जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
4: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
3: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
3: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
4: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
4: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
3: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
4: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू। लिखते हैं, सादर नमस्कार,
3: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
4: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
3: CIET द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
4: जी।
3: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की ध्वनि अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
4: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार
3: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
4: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
3: जी।
4: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी, जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
3: अजीत जी, आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
4: बिल्कुल सही,
3: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं
4: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी, पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा?
3: अजीत जी, सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और

0: जनता में बहुत लोकप्रिय थे।
1: जी, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं, उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी, श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
0: अजीत जी, ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है।
0: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
0: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गांव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
0: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
0: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
0: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
0: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
0: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओ, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
0: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
0: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
0: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हर पल चलती जाती चींटी, शम का राग सुनाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम।
2: ओहो, मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
2: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो।

0: अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
1: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
0: मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
1: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
0: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं और।
1: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
0: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
1: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
0: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
1: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
1: सिमरन ने आंखें झुका ली।
0: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
1: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
0: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
4: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है, और तो और।
0: बस बस, मैं समझ गई।
1: वो सोचने लगी,
0: परिश्रम से ही सब जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
1: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
0: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
5: तो बच्चों, सुना आपने? मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है? अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहाँ तक हो सके मदद करना। है ना ये हमारा अपना काम? तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
3: बहुत अच्छा काम।
2: साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन है कि मंच पर आकर प्रशस्ति पत्र ग्रहण करें। भाई वाह, कमाल कर दिया। साथियों, इतना ही नहीं, आज ही विश्वविद्यालय में मैसूर राज्य के दीवान का संदेश आया है कि श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की आगे की पढ़ाई और बाकी पूरा खर्च मैसूर सरकार ही वहन करेगी।
1: भाई वाह। पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
2: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है, इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
4: गुड मॉर्निंग सर।
5: नमस्ते
4: फ्रेंड्स,

0: सबको पता है कि आज की खास बैठक शक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
1: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
0: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
2: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
1: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
2: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
1: क्यों?
2: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
1: हो।
2: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
0: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए शक्कर में कर दिया जाए।
2: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
0: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
2: थैंक यू।
3: साथियों, विश्वेश्वरैया के सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और शक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
4: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
1: So funny,
3: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
5: किसने खींची चेन?
1: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
2: जी सर, मैंने ही चेन खींची है। सर, मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
5: व्हाट? क्या मजाक है, ये आप कैसे कह सकते हैं?
2: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।
5: आइए आइए, देखते हैं।
2: आइए, हम भी चलते हैं।
5: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
2: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
3: और मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
2: आइए सर, आइए देख लीजिए।
5: अभी तक तो यहाँ भी ठीक ही है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
2: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है।

0: सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है। तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
1: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
2: वी आर सो थैंकफुल टू यू, इट्स अमेजिंग। मे आई नो योर नेम प्लीज?
0: आई एम डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया।
2: ओह, द इंजीनियर इन चीफ ऑफ माइसूर स्टेट।
3: और रेलवे सचिव भी।
1: नमस्कार सर।
0: जी जी सर, मैं वही हूँ।
2: नमस्कार सर, नमस्कार। वी वर एक्चुअली गोइंग टू अटेंड योर मीटिंग ओनली। इट्स एक्चुअली आवर प्रिविलेज टू मीट यू पर्सनली। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।
0: धन्यवाद।
4: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
5: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
4: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
5: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1965 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर आज के बंगलुरु में हो गया।
4: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
7: जी मैं रमेश, पिछले 20 साल से ट्रक चला। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, पर मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी। सिर्फ 1 मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।
8: रात में सड़क किनारे खड़े वाहन पर साफ और सही रिफ्लेक्टर होना आवश्यक है ताकि वो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
9: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
10: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
9: कुसुमलता,
10: वीरेंद्र
9: और हमारी आज की विशेषज्ञ
10: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
11: उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। दोपहर के 3 बज चुके हैं, आइए अब आनंद लेते हैं प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज का। और इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। हालांकि अभी जो आप गीत सुन रहे थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, लेकिन हमने दोबारा कदम रख दिया है क्योंकि आपसे वायदा जो किया था और आपको भी अपना वादा निभाना है, हमारे साथ इस सफर में भी हमारे हम सफर बनना है। और तैयार हो जाइए इस गीत के बाद, जो अभी आपको गीत सुनवाने जा रही हूं मैं रफी साहब और लता जी की आवाज में, इस गीत के बाद एक सवाल आप सबकी नजर रहेगा, उस सवाल का जवाब देना है आपको, तो कागज और कलम लेकर बिल्कुल अपनी कमर की पेटी कस लीजिएगा। इस खूबसूरत से गीत को एंजॉय कीजिएगा और जवाब आपको कहाँ भेजना है, वहीं जहाँ आप हर रोज भेजते हैं, mail id iiprediodelhi@gmail.com। फिलहाल सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

programa, para. तीन बजकर पांच मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत सुनेंगे आप कुछ फिल्मी नगमे मेरी पसंद के। सपहर 3:30 जनाब हरे कृष्ण कौल का तहरीर करता ड्रामा नकारा का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप सुनेंगे। शाम 4:00 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। चार बजकर पचास मिनट पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये थे एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशोनारे प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTV रेडियो पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की मौजूदा पॉलिसी में सभी शहरियों की सहूलतों पर तवज्जो दी गई है। उन्होंने

करके इसे 5.5% कर दिया है। उसने माली साल 2027-28 के लिए मजमूई घरेलू पैदावार की शरह तरक्की 7.1% रहने की पेशगोई की है। और आज भारत ने फिजी में COP31 से पहले की मीटिंग में आबोहवा से मुतालिक सख्त तर इकदाम और पेरिस मुहिदे पर तेज तर अमल दरामद के लिए कहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अवाम का एतमाद और लाखों पार्टी कारकुनों को खुद का वफ कर देना उनकी ताकत का सबसे बड़ा वसीला है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर के दर्शन किए, मुल्क और इसके 140 करोड़ शहरियों के लिए दुआ की। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने खुद को और ज्यादा ताकत देने की दुआ भी की ताकि वो लोगों के लिए खुद को और ज्यादा वक्फ करके दिन रात काम कर सकें। उन्होंने कहा कि अवाम का एतमाद 25 साल में कायम हुआ है और इस अरसे में जो तजर्बा हासिल हुआ है वो एक अजीम असासा है। वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त में पॉलिसी के मफलूज रहने पर मरकूज बातचीत अब भारत की बढ़ती ताकत और मुजाहमत पर मरकूज है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल होने पर बीजेपी ने गुजरात के सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। जनाब मोदी के अवामी खिदमत के 25 सालों में पहले गुजरात के वजीर आला और बाद में मुल्क के वजीर आजम के ओहदे का अरसा शामिल है। पूरे गुजरात में यात्रा निकलने के मकाम पर नई दिल्ली से विकसित भारत संकल्प सभा का वजीर आजम का खिताब लाइव नशर किया गया, जिसके बाद मकामी लीडरों ने यात्रा के बाजाब्ता आगाज के तौर पर सेवा ज्योत जलाई। गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में सेवा ज्योत यात्रा में शिरकत की, जबकि गुजरात बीजेपी के रियासती सदर जगदीश विश्वकर्मा ने साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर सेवा ज्योति तकरीब में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सरबराहे हुकूमत की हैसियत से 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। उनकी मुद्दतकार 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें 12.5 साल गुजरात के वजीर आला और 12.5 साल वजीर आजम की हैसियत से शामिल है। आज ही के दिन साल 2000 में जनाब मोदी ने पहली मर्तबा गुजरात के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया था। वो मई 2014 में वजीर आजम बने थे। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी जिंदगी के 25 साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने की सताइश की है और इसे सुनहरी और तारीखी दिन करार दिया। गुरुग्राम में आज विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में दफा 370 की मनसूखी, माओनवाजियत का खात्मा और मुल्क के बुनियादी ढांचे को आला मियारी सतह तक पहुंचाने जैसी अहम हसूलियाबियां हासिल हुई हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुहिम के हिस्से के तौर पर मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसके तहत नौजवान अफराद सेवा ज्योति यात्रा निकालेंगे और मुकर्रा मकामात पर मशल नस्ब करेंगे। जनाब शाह ने सभी से बड़ी तादाद में यात्रा में शिरकत की अपील की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। ये तकरीब टेली मुआसलात, डिजिटल कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी अख्तरा के मैदान में खातिरख्वाह पेशरफ्त को नुमाया करेगी। साथ ही इश्तराक, सरमायाकारी और मालूमात के तबादले का आलमी प्लेटफॉर्म भी फराहम करेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का मौजू है लामहदूद फैलाव, डिजिटल अख्तरा, अगली नस्ल की कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरक्की में भारत की बढ़ती सलाहियतों की अक्कासी। आज से शुरू हुई इस 4 रोजा तकरीब का इनेकाद टेली मौसलात के महकमे और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुश्तरका तौर पर किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की शराकत दारी न सिर्फ आज के लिए की जा रही है बल्कि यह आने वाली नस्लों के लिए भी है। राजधानी अक्रा में घाना के फॉरेन सर्विस के इदारे में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सिफारत को मुसाबिकती रुझान से इस तरह निमटना चाहिए कि वफादात में इख्तलाफात के बावजूद टकराव की शक्ल अख्तियार

दिल देके देखो फिल्म का ही नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में, मौसीकी उषा खन्ना की थी। और उषा खन्ना की ही मौसीकी में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया हुआ आओ प्यार करें, फिल्म का ये नगमा।

ये नगमा जो अभी आपने सुना, इसको कलमबंद किया था नगमा निगार जावेद अनवर ने, जो उषा खन्ना के वालिद मोहतरम, मनोहर खन्ना उनका असल नाम, और शायरी वो करते थे जावेद अनवर के नाम से। और आखिरी पेशकश उषा खन्ना की मौसीकी में फिल्म आग का नगमा महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया हुआ।

0: ये था खराज तहसीन उषा खन्ना को उनके बर्थडे के मौके पर मेरी पसंद प्रोग्राम में उर्दू सर्विस की जानिब से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए सुनिए जनाब हरी कृष्ण कौल का तहरीर करदा ड्रामा नक्कारा का दूसरा और आखिरी हिस्सा।
1: साहब, आपकी तहरीर में कितना असर है ये मैंने अब देख लिया।
2: ये बताएं कि आपके अफसर पर भी इसका कुछ असर हुआ कि नहीं?
1: जी वही तो बता रहा हूं, 2 दिन उसने ऐसे पोज किया जैसे उसने नकारा पढ़ा ही ना हो। हालांकि मैंने अखबार के निकलते ही एक पर्चा फोल्ड करके खुद उसके लेटर बॉक्स में डाल दिया था।

0: तीसरे दिन उसने कहा कि सब बेबुनियाद और शरारत आमेज है। चौथे दिन स्टोर कीपर से रजिस्टर लेकर खुद स्टॉक दर्ज किया और नीचे अपने दस्तखत किए। पांचवें दिन अलग से अपने कमरे में बुलवाकर मुझसे मेरे बीवी बच्चों का हाल पूछा। छठे दिन मुझे टूर पर भेजने का वादा किया और सातवें दिन
1: बस कीजिए मनोहर साहब, बस कीजिए, मैंने सब सुन लिया।
0: जी अभी आपने पूरी बात कहाँ सुनी। सातवीं और आठवें दिन जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, दिल करता है कि उस सब पर एक जबरदस्त जासूसी नॉवेल लिखूं, मगर क्या करूं, मुझे उर्दू लिखनी ही नहीं आती।
1: जासूसी नावल लिखने के बदले आप खुद थोड़ी सी जासूसी करके मेरी जरा सी मदद कर दीजिए।
0: मैं समझा नहीं।
1: मनोहर साहब, मैं इस वक्त आपके यहाँ एक अहम काम के सिलसिले में आया हूँ।
0: हाँ?
1: वो आपने एक दिन कहा था ना कि आपके किसी दोस्त के पास कई दवासाज कंपनियों की एजेंसियां हैं।
0: क्यों साहब, मेरे अफसर के बाद अब दवा बेचने वालों की शामत आई है क्या?
1: नहीं, मेरा एक रिश्तेदार है, बहुत गरीब है बेचारा। आप मुझे अपने दोस्त से अगर मिला दें तो हो सकता है कि वो उसे कहीं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लगा सके।
0: अरे यूसुफ साहब, मनोहर इतना बेवकूफ नहीं जितना नजर आता है, मगर यकीन मानिए साहब, मेरा दोस्त इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो ईमानदार ना सही, मगर डरपोक जरूर है। उसमें कोई ऐसा वैसा काम करने की हिम्मत नहीं है। हाँ, मैं आपको एक काम के आदमी से जरूर मिला सकता हूं।
1: वो कौन है, क्या है?
0: अरे साहब, बड़ी ऊंची चीज है, बड़ी ऊंची चीज है, तगड़ी आसामी है। कल तक चितड़े पहनकर नंगे पांव फिरता था, आज सफारी सूट पहनकर मोटरसाइकिल पर घूमता है, और यकीन मानिए कल मोटर कार दौड़ाता नजर आएगा।
1: तो जनाब, हमें भी उनके दर्शन करा दीजिए।
0: साहब भाई, उसके दर्शन के लिए सूरज डूबने का इंतजार करना होगा। मैं आज शाम 6 बजे आपके दफ्तर के नीचे आपका इंतजार करूंगा और वहीं से हम सीधे उसके दर्शनों के लिए जाएंगे।
1: जी बेहतर।
0: यूसुफ साहब, क्या क्या बातें हुई। शुरू शुरू में आप उसकी बातें चटखारे ले लेकर सुन रहे थे, लेकिन बाद में यकायक संजीदा हो गए।
1: हाँ, बात ही संजीदगी की थी।
0: वो तो थी, मगर आप जाने किन ख्यालों में खो गए। मुझे लगा जैसे उसने आपकी कोई दुखती रग छेड़ी हो। यूसुफ साहब, आप चुप क्यों हैं? बात क्या है?
1: आपने मुझसे कुछ कहा?
0: जी नहीं, उस राजकुमार से कहा जिसका जिक्र मेरा दोस्त हर बैग खत्म करने के बाद करता था। क्यों यूसुफ साहब, ये राजकुमार आखिर कौन है?
1: जी वो, छोड़ो मनोहर भाई।
0: हाँ?
1: चलो यहां से चलते हैं, मगर ठहरो, अभी लाल बत्ती जल रही।
0: साहब मेरी एक बात गिरा बांध कर रखें, अगर आप लाल बत्ती हरी बत्ती के चक्कर में रहेंगे तो कभी सड़क पार नहीं कर पाएंगे।
2: यूसुफ मियां, ये तुम्हें क्या हो गया है, कुछ बोलते क्यों नहीं है? आखिर बात क्या है, जुबान पर मोहर और मुंह पर ताला किसने लगाया है? अरे भाई, मैंने मुंह खोलने को कहा और तुमने अपना ब्रीफकेस खोल दिया, क्या है इसमें?
1: लीजिए, पढ़ लीजिए।
2: जो दवा के नाम पे जहर दे। अरे भाई, ये कोई फिल्मी कबाली है या अखबारी मजमून?
1: पढ़ते जाइए।
2: अच्छा, वाह, शाबाश, तो तुमने नकली दवाइयों के स्कैंडल का पर्दाफाश कर ही दिया। अब इन मौत के सौदागरों को लोगों के कहर से कोई भी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि दिलगीर का नक्कारा ही आवाज खल्क है और आवाज खल्क को ही नक्कारे खुदा कहा गया है। अब अगर तुम मन महसूस कर क्यों बैठे हो, अगर किसी और ने ये रिपोर्ट तैयार की होती तो वो चहकता होता है, उसके पांव जमीन पर नहीं आसमान पर होते।

0: तुम्हारा कोई अपना इस कारोबार में तो नहीं है?
1: अफसोस तो यही है दिलगीर साहब कि है।
0: याद रखो यूसुफ, जो आदमी इंसानियत का दुश्मन हो वो किसी का अपना नहीं हो सकता, ना मेरा और ना ही तुम्हारा, भले ही उसके साथ तुम्हारा दोस्ती का रिश्ता हो या खून का। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। इस ब्रीफकेस में और क्या है?
1: अब तो ये खाली है।
0: तो इधर लाओ, तुम्हारी ये रिपोर्ट एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है। मैं नहीं चाहता कि इसकी किताबत इसी दफ्तर में हो। मैं इसी ब्रीफकेस में बंद करके इसे यहां से ले जाऊंगा और बाहर किसी मोतबिर कातिब से लिखवाऊंगा। ले जाऊं?
1: ले जाइए, ये भी कोई पूछने की बात है।
0: मालूम नहीं तुम्हारी बोलती आज बंद क्यों हो गई है, मगर तुम बोलो या ना बोलो, इस ब्रीफ केस में बंद तुम्हारी तहरीर जरूर बोलेगी। जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का।
1: आज आपने लहू पर ही दोनों शेर फरमाए,
0: क्योंकि
1: ऐसा क्यों?
0: तुम्हारी रिपोर्ट ने मेरा भी लहू गरमा दिया है।

0: क्या बकते हो यूसुफ, होश में हो?
1: तुम्हें कैसा लगता है?
0: मुझे तुम इडियट लगते हो, पहले भी लगते थे और आज भी लगते हो।
1: मगर फ्रेंड्स, मैं नहीं जानता कि मैं आज इडियट बना हूं या पहले इडियट था, मगर इतना जरूर है कि अगर पहले था तो आज नहीं हूं, और अगर आज हूं तो पहले नहीं था।
0: फिर बकने लगे। भाई कम से कम तब तक यहां रहो जब तक इस शहर में हो। नजमा, तुम इसे समझाती क्यों नहीं?
2: भाईजान, आपका फरमाना दुरुस्त था, मगर आपकी मेहरबानी से हमारा इसी हफ्ते काम शुरू करने का इरादा है। बस एक दो दिन के अंदर अंदर मटेरियल भी साइट पर पहुंच जाएगा, इसलिए हमने पास ही दो कमरे किराए पर लिए हैं, और जितनी जल्दी हम शिफ्ट करेंगे उतना हमारा ही फायदा होगा।
0: फायदा तो यहां रहने में है, वहां किराया देना पड़ेगा।
1: उसकी भी कोई परेशानी नहीं होगी प्रिंस, मैं खाली वक्त में दवाइयां बेच लिया करूंगा, खासकर इन चार कंपनियों की दवाइयां।
0: What do you mean?
1: I mean what you have already understood.
2: ओ, लेकिन मैं कुछ नहीं समझी कि तुम लोग लड़ रहे हो या आपस में मजाक कर रहे हो।
0: यूसुफ,
1: प्रिंस मेरी जहनी कैफियत को समझने की कोशिश करो। मुझे जो सदमा हुआ है उसने मुझे अंदर से बिल्कुल तोड़ दिया है। मैं नहीं जानता था कि जिसका जहर दुनिया की रग रग में पैवस्त हो चुका है वो मेरा अपना ही फोड़ा था।
2: ओ, मैं कुछ नहीं समझी, फोड़ा कहाँ निकला है, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम।
0: देखा, तुम्हारी बीवी कितनी मासूम और सीधी है, कम से कम इसी का ख्याल करके फोड़े को मत छेड़ो। दुनिया को भाड़ में जाने दो, अपने फायदे की कोई बात सोचो।
2: अपने फायदे की बात इन्होंने कब सोची है जो अब सोचेंगे?
0: बोलो, अब तुम्हारा क्या फैसला है?
1: मैंने फोड़े को नश्तर लगाने का फैसला कर लिया है।
0: नश्तर लगाओगे? नश्तर लगाओगे? मैंने 30,000 में तुम्हारा नश्तर खरीद लिया है। अच्छा, मैं चलता हूं। सी यू, बाय।
1: तो ये बात है?
2: ओ, क्या बात है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
1: 30,000 में मेरा नश्तर खरीद लिया है।
2: मैं पूछती हूँ कि प्रिंस इस तरह क्यों चला गया?
1: सुनना चाहती हो कि क्यों चला गया? तो सुनो, मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है।
2: आग लगे तुम्हारी रिपोर्टों को, मुझे बताओ तो सही कि बात क्या है।
1: रिपोर्ट नकली दवाओं के रैकेट के बारे में थी, उन्हीं नकली दवाओं के बारे में जिनकी वजह से तुम मौत के मुंह में पहुंच गई थी। काफी छानबीन करने के बाद मैं उस रैकेट के सरगने का पता लगाने में कामयाब हो गया था।
2: सुनो, मुझे ये फिजूल की बातें नहीं सुननी है, मैं पूछती
1: हूँ। जानना चाहोगी कि वह सरगना कौन है?
2: देखो, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि तुमने प्रिंस से क्या कहा जब वो उठकर चला गया?
1: वो सरगना और कोई नहीं बल्कि प्रिंस ही है।
2: क्या क्या कहा तुमने? और तुमने प्रिंस के खिलाफ ही अखबार में लिखा है?
1: लिखा है, मगर छपेगा अगले हफ्ते।

0: मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने एहसान फरामोश हो। अगर प्रिंस ने अपने मकान में हमें पनाह नहीं दी होती तो हम कहीं फुटपाथ पर पड़े होते। और जानते हो ना, कुछ दिन पहले उसने तुम्हें 30,000 रुपए दिए थे।
1: इसीलिए तो कह रहा था ना कि उसने मुझे 30,000 रुपए में खरीद लिया है।
0: बिल्कुल खरीद लिया है। जानते हो 30,000 कितने होते हैं? तुम्हारी पूरे साल की तनख्वाह से भी बड़ी रकम है। जाओ उसे ढूंढो और जहां भी मिले उससे माफी मांगो।
1: माफी? ओ हाँ, मुझे माफी मांगनी ही पड़ेगी, मगर उससे नहीं, तुमसे।
0: मुझसे?
1: हाँ, मैंने कुछ और ही सोचा था, मगर अब मेरा शक दूर हो गया है नजमा। मैं वाकई अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मेरा शक था कि प्रिंस तुम्हारी वजह से मुझ पर इतने एहसान कर रहा है।
0: यूसुफ,
1: मेरा दोस्त वो बस नाम का ही है, असल में वो तुम्हारा यार है।
0: यूसुफ,
1: इसीलिए उसने 30,000 रुपए का चेक तुम्हारे ही नाम से काटा।
0: यूसुफ, यू डेविल!
1: नजमा, नजमा, ये तुम्हें क्या हो गया नजमा? अपने आप को संभालो नजमा।
0: ठीक हूं, मुझे हाथ मत लगाओ। वो चेक मैंने अकाउंट में सिर्फ जमा कराया है, मगर अभी उसमें से एक पैसा भी नहीं निकाला। मैं अभी 30,000 का चेक काटती हूं, तुम उसे वापस कर दो।
1: ठीक है, तुम चेक लिख लो, जब वो आएगा तो लौटा देंगे।
0: तुम समझते हो मैं अब यहां और रहूंगी? मैं अभी इसी वक्त ये घर खाली करूंगी।
1: एक दो दिन तक हम यहां से शिफ्ट करने ही वाले हैं।
0: मैं कहती हूं अगर अभी इसी वक्त मुझे यहां से नहीं ले चलोगे ना, तो मैं गले में फांसी का फंदा डालकर जान दे दूंगी।
1: नजमत, ठीक है, मैं अभी कोई ना कोई इंतजाम करता हूं। सलाम वालेकुम दिलगीर साहब, मैं यूसुफ बोल रहा हूं। जी, ऐसा है कि हमारे दफ्तर के पिछवाड़े एक ट्रक वाला है ना, वही जो सामान ढोने का काम करता है। जी, मुझे नहीं मालूम, हाँ शायद यही नाम हो। हाँ हाँ, कबाड़ी के बिल्कुल साथ। जी, उससे एक ट्रक भेजने को कह दीजिए। जी जी हाँ, आज ही नहीं बल्कि अभी। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, नहीं हमने सोचा कि शिफ्ट करना ही है तो जितनी जल्दी करें उतना ही बेहतर होगा। सामान है ही कितना दिलगीर साहब। जी हाँ, छोटा ट्रक ही ठीक रहेगा। तो हम अपना सामान पैक करना शुरू करें? बहुत बहुत शुक्रिया। आओ नजमा, जब तक ट्रक आए तब तक हम अपना सामान बांध लें।
0: मैं कहती हूँ मुझे हाथ मत लगाओ, मैं नहीं जानती तुम इतना गिर सकते हो।

0: तो आप ही हैं दिलगीर साहब, नकारे के मुदीर आला, निडर और बेबाक सहाफी।
1: आपकी जरा नवाजी है। वैसे लगता है यूसुफ साहब ने आपके सामने मेरी जरूरत से कुछ ज्यादा ही तारीफ की है। अब इत्तेफाक देखिए, मैं यूसुफ साहब से मिलने आया था, मगर मुलाकात हो गई उनके लॉर्ड, उनके दोस्त, उनके मोहसिन प्रिंस साहब से।
0: तो आपको हमारा ये नाम भी मालूम है।
1: अखबार नवीसों का काम ही बदनाम, गुमनाम और बेनाम लोगों को उनके सही नाम देना होता है। लेकिन अब तो माशाल्लाह पहले ही काफी नामवर हैं। खैर, ये बताइए कि यूसुफ साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे एक जरूरी काम है।
0: वो यहां से चले गए हैं।
1: उनकी बेगम तो घर में होंगी?
0: नहीं, दोनों यहां से चले गए हमेशा के लिए।
1: मतलब उन्होंने शिफ्ट कर लिया है? मुझसे तो कहा था कि 3-4 दिन के बाद शिफ्ट करेंगे। खैर, मैं उन्हें उनका ब्रीफ केस वापस करने आया था। वो इसी ब्रीफ केस में एक रिपोर्ट लेकर आए थे जो नक्कारे के अगले शुमारे में छपेगी। अच्छा, इजाजत दीजिए, अब चलता हूं।
0: खुदा हाफिज।
1: मगर हुजूर, आपने ये नहीं पूछा कि रिपोर्ट किस चीज के बारे में थी?
0: नकली दवाओं के रैकेट के बारे में।
1: वल्ला, इसे कहते हैं नजर। लिफाफा देख कर ही खत का मजमून, मेरा मतलब है

0: ब्रीफ केस देखकर ही रिपोर्ट का मजमू भाप लिया।
1: रिपोर्ट कैसी बनी है?
0: अरे हुजूर, यूसुफ साहब की कलम के क्या कहने, वो शमशीर की धार से भी तेज है। दिल करता है कि उसके हाथ चूम लूं और अगर कुफ्र न गिना जाए तो उसके कदमों का सजदा करूं। उस नक्श पा के सजदे ने क्या क्या किया जलील, मैं कूचे रकीब में भी सर के बल गया।
1: ये शायरी है तो खूब है, मगर नसर में भी कोई बात कीजिए।
0: अगर आप नसर का कमाल देखना चाहते हैं तो यूसुफ साहब की रिपोर्ट पढ़िए। इसे ही कहेंगे नसर, जो नज्म से भी ज्यादा खूबसूरत है।
1: कीमत क्या है?
0: नक्कारे के एक पर्चे की कीमत वैसे तो 3 रुपए है, मगर यूसुफ साहब का मजमून वो तो पेश कीमत है। लेकिन आप तो खुद कदर शनास हैं। खैर, अब मैं चलता हूं, ये ब्रीफ केस वापिस ले जाऊं या यहीं आपके पास छोड़ जाऊं, ताकि आप ही यूसुफ साहब को वापस करें, अब मतलब है जब वो आपसे मिले।
1: छोड़ जाइए यहीं, या जैसा आप मुनासिब समझें।
0: अब आपसे क्या छुपाना, अब मुझे बिना ब्रीफ केस हाथ में लिए चलना ही नहीं आता, ये एक तरह से मेरे लिबास का जुज बन गया है।
1: नो प्रॉब्लम, इस ब्रीफ केस के बदले हम आपको दूसरा ब्रीफ केस दे सकते हैं।
0: बखुदा, इसे कहते हैं नजर, नजर ही नहीं नजर उकाब। तो लीजिए हुजूर, संभालिए यूसुफ साहब का ब्रीफ केस।
1: आप भी ठहरिए, मैं अंदर से दूसरा ब्रीफ केस लेकर आता हूं।
0: ले आइए, मुझे भी कौन सी जल्दी है, मेरे नामुराद जुनून का अब इलाज कोई तो मौत है, जो दवा के नाम पे जहर दे उस चारागर की तलाश है।
1: ये लीजिए, ये रहा आपका नया ब्रीफ केस।
0: शुक्रिया, अब मैं चलता हूं।
1: बैठिए, कोई चाय कॉफी?
0: ला हौले वला कुव्वत, आपने हमें बस चाय कॉफी के काबिल समझा है।
1: वो इसलिए दिलगीर साहब कि हम आपको परहेजगार समझते हैं।
0: हाँ, परहेजगार हम जरूर हैं, हमने बेशक तौबा की है, मगर बकौले गालिब, गर हमने की थी तौबा साकी को क्या हुआ था। खैर, इस वक्त चलता हूं, आदाब,
1: खुदा हाफिज। और हाँ, अगर यूसुफ साहब या कोई और साहब कोई और बलबला अंगेज रिपोर्ट लिखें तो छापने से पहले हमें भी इससे लुत्फ अंदोज होने दीजिए।

0: भाई कहा ना, तुम्हारी रिपोर्ट भी छप जाएगी।
1: मगर कब दिलगीर साहब?
0: ये मैं कैसे कह सकता हूँ, इन मामलों में ताखीर तो होती ही रहती है।
1: ताखीर की वजह कोई खौफ तो नहीं, कोई मसलहत तो नहीं?
0: खौफ या मसलहत नहीं, जिम्मेदारी का एहसास ही ताखीर की वजह है। हम अखबार वालों को कोई सनसनी खेज मवाद छापने से पहले उसके हर पहलू पर हर जाविये से गौर करना चाहिए।
1: मेरे ख्याल में अखबार वालों को चाहिए कि वो जहर को जहर ही कहें, उसे गंद ना कहें, उससे चाहे अपने नाराज हो या पराए। मैं परवरदिगार से यही मांगता हूं कि वो मुझे आखिरी दम तक सच बोलने की तौफीक दे।
0: सच बोलने की तौफीक? ना बाबा ना, मैं खुदा से यही दुआ मांगूंगा कि हश्र के दिन सच कहने की तौफीक न दे, कोई हंगामा बपा हो मुझे मंजूर नहीं।
1: ये शेरो शायरी मैं बहुत सुन चुका हूं दिलगीर साहब, मुझे ये बताइए कि मेरी रिपोर्ट आप कब छाप रहे हैं?
0: बहुत ताव खा रहे हो? तो फिर सुन लो, तुम मेरे मुलाजिम हो और मैं तुम्हारा मालिक। मैं तुम्हें हर महीने तनख्वाह देता हूं, जिसके इवज तुम मेरे अखबार के लिए रिपोर्ट तैयार करते हो। तुम इस महीने की तनख्वाह ले चुके हो, यानी मैंने तुम्हारी रिपोर्ट मुआवजा देकर खरीद ली।

0: है।
1: ओह,
0: अब ये मेरी मर्जी पर मुनहसर है कि मैं उसे शाया करूं या जाया करूं, तुम्हें इससे कोई गरज नहीं। बाकी रहा तुम्हारा ब्रीफकेस, न जाने मैं उसे कहां भूल आया हूं, मगर मैं तुम्हें उसकी कीमत अदा करूंगा। ये लो
2: इतने सारे नोट, लेकिन मैंने उसे सिर्फ 250 में खरीदा था।
0: खोई हुई चीज के लिए उससे 10-20 गुना ज्यादा कीमत तो देनी ही होती है।
2: दिलगीर साहब, मुझे ना तो वो ब्रीफ केस चाहिए और ना ही आपका ये नोट।
0: कमाल है, तो फिर क्या चाहिए?
2: रुख्सत, मुझे रुख्सत दीजिए। खुदा
3: हाफिज़। अरे यूसुफ साहब, आइए आइए, कितना पान खाएंगे आप?
4: जी नहीं शुक्रिया, ना तो मैं पान खाता हूं और ना ही बीड़ी सिगरेट पीता हूं।
3: हाँ भाई, आप तो अच्छे बच्चे हैं, आप झूठ भी नहीं बोलते हैं, हरी बत्ती जलने पर ही सड़क पार करते हैं, मगर फिर भी आप दुखी हैं।
4: क्यों, क्या मैं आपको दुखी लगता हूं?
3: भाई कम से कम इस वक्त तो जरूर लगते हैं। यूसुफ साहब जरा गौर कीजिए, जब सभी रॉन्ग साइड पर चलते हो तब आप राइट साइड पर चलने की बेवकूफी क्यों करते हैं? चलिए चलिए, जल्दी कीजिए, मेरा हाथ पकड़ लीजिए।
4: मनोहर भाई, आप बेशक मेरे दोस्त हैं, मगर मुझसे ये उम्मीद ना रखें कि मैं आपका हाथ थाम कर चलूंगा, और वो भी लाल बत्ती को ठेंगा दिखाकर सड़क पार करने के लिए। यकीन मानिए, मैं किसी का हाथ पकड़कर चलने में यकीन नहीं रखता हूँ।
3: यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं यूसुफ साहब, मुझे उस स्टॉप से बस मिलेगी और आप शायद सीधे जाएंगे। अच्छा, आदाब अर्ज़
4: है। आदाब।
5: इतनी देर तक कहाँ रहे? मैं बहुत परेशान थी।
4: मैं मशकूर हूं कि तुम मेरे लिए परेशान थी।
5: मैं तुमसे माफी मांगती हूँ।
4: माफी किस बात के लिए?
5: तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया।
4: मतलब कि मैंने प्रिंस के खिलाफ लिखकर बहुत अच्छा किया?
5: वो मैं नहीं जानती कि रिपोर्ट लिखकर तुमने ठीक किया या गलत, मगर प्रिंस का घर छोड़कर, उसके रुपए लौटाकर, उसके गोरख धंधे से अपने को अलग करके हमने बहुत अच्छा किया।
4: नजमा, मैंने अपने आप को दिलगीर के चक्कर से भी आजाद करा लिया है।
5: क्या? क्या क्या तुमने नक्कारी की नौकरी छोड़ दी है?
4: यही समझो।
5: मगर क्यों?
4: और कोई रास्ता मेरे सामने नहीं था।
5: हमने हमेशा गलत आदमियों का सहारा लिया।
4: शायद।
6: यूसुफ साहब। अरे नसीर अहमद भाई, आ जाओ आ जाओ।
3: अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब।
6: वालेकुम अस्सलाम। पहले ये बताइए, आपको मेरा ये नया पता कहाँ से मिला?
3: हाँ जी साहब, आपका ये नया पता कहीं दर्ज होता तो मुझे मिलता।
6: पता नहीं मिला और फिर भी आप यहाँ इतनी दूर पहुंच गए, कमाल है।
3: जी हाँ, मुझे आपके घर पहुंचना था और मैं पहुंच गया। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि हमारे दफ्तर के पिछवाड़े कबाड़ी के साथ ही जिन सरदार जी की दुकान है ना, उसी के ट्रक में आप अपना सामान पुराने घर से नए घर ले गए थे।
6: तो आखिरकार आपने मुझे पा ही लिया।
5: आपको शायद दिलगीर साहब ने भेजा होगा।
3: आज सुबह डाकिया यूसुफ साहब के नाम एक लिफाफा लेकर आया। असलम मियां ने वो लिफाफा भी बाकी डाक के साथ दिलगीर साहब की मेज पर रख दिया, और मैं दिलगीर साहब और इनके बीच हुई तेज कलामी से वाकिफ था ही। मुझे लगा दिलगीर साहब जरूर लिफाफा खोलकर अंदर का खत पढ़ेंगे, और मैं उनकी इस बुरी आदत से भी वाकिफ था, इसलिए मैंने मेज से यूसुफ साहब का खत उठाकर चुपके से अपनी जेब में रखा, और ये रहा वो लिफाफा।
6: आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए।
5: क्या लिखा है खत में?
6: कोई साहब एक नया अखबार निकाल रहे हैं, ये खत उन्होंने ही लिखा है, वो चाहते हैं कि मैं उनके अखबार का काम संभाल लूं।
5: सच?
6: हाँ, पूछा है कि मैं कितनी तनख्वाह पर काम करूंगा और मेरी शर्तें क्या होंगी।
5: अल्लाह का लाख लाख शुक्र, किसी ने सच कहा है, अगर एक दरवाजा बंद हो जाता है तो 100 दरवाजे खुल भी जाते हैं।
6: आप तो खुश हो गई ना?
5: क्यों, तुम खुश नहीं हुए?
6: हुआ तो सही, मगर किसी दूसरी वजह से।
5: क्या मतलब?
6: नजमा, मैं इसलिए खुश हूं कि ये दुनिया मेरे सगे भाइयों

या फिर प्रिंस, दिलगीर और मनोहर तक ही महदूद नहीं है। यह दुनिया बहुत वसी है और यहां नसीर अहमद भी रहता है, जो कोई जाती गरज या मतलब ना होने पर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है। वो नकारा नहीं पीटता है, दस्तक देता है। नजमा, मैं सचमुच बहुत खुश हूं, बहुत खुश, क्योंकि इस दुनिया में मैं अकेला नहीं हूं। नजमा, अकेला नहीं।

नकारा। अभी आप जनाब हरी कृष्ण कौल के लिखे इस ड्रामे का दूसरा और आखिरी हिस्सा समाप्त कर रहे थे। तरतीबो पेशकश प्रेम वोहरा की थी। हिस्सा लेने वाले फनकार थे यूसुफ, बालाकोचर, वीना होरा, मनोहर, एस एम तहसीन, असलम, राजेंद्र वर्मा, टी आर मेहता, रईस मिर्ज़ा, दलबीर साहिब, नसीर अहमद और अकबर वाला। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़। मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्रीडेज पर हमारी नशा जारी है। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे। आगाज़ बादल फिल्म के नगमे से मन्नाडे का गाया हुआ ये नगमा।

बादल फिल्म का नगमा सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज़ में, मौसीकी उषा खन्ना की थी। और लीजिए अब सुनिए उषा खन्ना का गाया हुआ एक रात फिल्म का नगमा, जिसकी मौसीकी तरतीब दी खुद उषा खन्ना ने।

ये फिल्मी नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश फैसला फिल्म का नगमा मुकेश का गाया हुआ, मौसीकी तरतीब दी उषा खन्ना ने।

0: मीडियम में दोन एफ एम चैनल का आकाशवाणी करगिल ना जरिंचुत वक्स बदर फितो तो सुतुकान फेत सों सुकस्तर देलुक्सी हकुई प्रोग्राम प्लेंटिस ज्ञान मसत
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो वाई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ,
3: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: दोस्तों नमस्कार, हेल्थ एंड्स के इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बहुत बार जब हमारे घर में कोई स्त्री गर्भवती होती है तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई टीके लगवा लीजिए। हम ये टीके क्यों लगवा लें, उसके क्या लाभ है, हम नहीं लगवाते हैं तो क्या इसके नुकसान होंगे? तो अब ये जानना आवश्यक है कि भाई टीकाकरण जरूरी क्यों, इसके लिए जरूरी है कि हम किसी विशेषज्ञ से बात करें। और दोस्तों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियाली भट्टाचार्य जो SGPGI लखनऊ में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद सुभाष जी। तो आज जब टीकाकरण की बात आई है तो हम आपको दो बच्चों की बात बताएं। पहले 9 महीने पे हम लोग खसरे का टीका लगाते हैं
5: जी।
6: एक टीकाकरण से हमें एक बच्चे को हम सुरक्षा प्रोटेक्शन देते हैं
5: जी, जी।
6: ताकि बड़ी बीमारियों से स्पेशली 5-6 बीमारियां हैं जिसमें खसरे का जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो एक है। अब दूसरे बच्चे की बात करें, दूसरा बच्चा 5 साल पे आया मेरे पास, उसके एक पैर में लकवा हो गया था। पता चला कि उसने पोलियो का टीका नहीं लगवाया था, वो डॉक्टर का बच्चा था। पता चला उनका बच्चा गांव में था और वहां उन्होंने टीका लगाने से मना कर दिया था उनके दादा दादी ने। तो क्या इस पोलियो को हम

0: प्रिवेंट नहीं कर सकते थे, अगर हम पोलियो के ड्रॉप्स पिला देते बच्चे को, तो हमने बोला सुरक्षा, अब हम बोल रहे हैं प्रिवेंशन, जैसा कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तीसरी चीज, आप जानते हो इंडिया में तो हम इरेडिकेट कर चुके हैं पोलियो को, हम पोलियो का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कई और बीमारियों की तरफ। तो अगर हम स्मॉल पॉक्स जैसी, जिसको बड़ी माता बुला करते थे लोग, स्मॉल पॉक्स को हम इरेडिकेट कर चुके हैं, हम इंडिया से पोलियो को इरेडिकेट कर चुके हैं, तो ये कैसे बन पाया? ये इरेडिकेशन सिर्फ टीकाकरण से ही बन पाया।
1: जी जी जी, जी।
0: तो तीन तो मैंने विशेषताएं आपको गिनवा दी कि एक तो ये प्रोटेक्शन देता है, दूसरा ये प्रिवेंशन करता है, और तीसरा ये इरेडिकेशन करता है बड़ी बड़ी बीमारियों का। देखिए, अब हमें टिटनेस सुनने तक को नहीं मिलता है।
1: जी।
0: और जहां भ्रांतियों की बात आपने की, तो वैक्सीन जो है इतने लाखों करोड़ों बच्चों में लगता है,
1: जी,
0: तो उसके बावजूद वो सेफ है, वो इफेक्टिव है। तो ये चीजें तो हमको माननी पड़ेंगी कि वैक्सीन से फायदा होता है।
1: जी।
0: अब आपको एक और एग्जांपल फायदे की बात कहें।
1: जी।
0: जो नया बच्चा पैदा होता है, उसमें थोड़ा बहुत माँ के खून से छन के प्रोटेक्शन आता है, पर वो संपूर्ण तरह से इमेच्योर होता है बच्चा। उसका इम्यूनिटी बढ़ रहा होता है, उसका इम्यून सिस्टम मच्योर हो रहा होता है, उसके बाकी अंग मच्योर हो रहे होते हैं, तो उसमें लड़ने की ताकत होती नहीं है। तो उसको टीकाकरण हम सबसे पहले शुरू करते हैं 1.5 माह पे। तो अगर उसके इर्द गिर्द जो एडल्ट्स हैं वो टीकाकरण अपना करवा लेते हैं, तो वो बच्चे तक बीमारी पहुंच ही नहीं पाएगी।
1: जी।
0: और जब वो 1.5 महीने का होगा, उसको हम टीकाकरण करके सुरक्षा देना शुरू करेंगे। आप सोचो कि एक बच्चे के पीछे, सपोजिंग बच्चा स्कूल गोइंग बच्चा है और आपने उसको टीकाकरण नहीं कराया है और उसको काली खांसी हो गई, तो कितने दिन वो स्कूल नहीं जा पाएगा, कितने दिन उसकी तीमारदारी में माँ बाप छुट्टी लेके बैठेंगे। तो ये सब समस्याएं तभी आती हैं जब आपने समय पर टीकाकरण नहीं कराया होता है।
1: जी, जी।
0: और आपने जर्मन मीजल्स का नाम सुना होगा, जब माताओं को अपंग बच्चे पैदा होते हैं तरह तरह के डिफॉर्मिटीज लेके।
1: जी जी जी।
0: तो नॉट ओनली प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और इरेडिकेशन, आपने एक सुरक्षा घेरा दिया
1: जी।
0: आपने अपने आगे वाली पुश्तों को सेफ रखा, आपने कितने सारे पैसे और समय की बचत कर ली।
1: जी जी जी जी, जी।
0: तो इन सब कारणों से एसेंशियल है कि आप समय पर अपने बच्चे का टीकाकरण जरूर जरूर करें।
1: जी जी। तो श्रोताओं, आपने डॉक्टर साहब को सुना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चे का टीकाकरण अवश्य करवाएंगे। यदि कुछ लेट हो गया है तो भी आप उस चिकित्सालय में जाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।
2: दरेंतस रदलुक से हुए प्रोग्राम पलयन जेत पिन मीडियम वेव दोन एफएम चैनल इकदु आकाशवाणी करगिलिन कस्ता प्रोग्राम इंतस नियन मसत शेरपा नचुनिफिया प्रोग्राम असिरतम खान पिन खदीजा बानू।
3: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
4: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
5: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
6: सर, 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
4: वाओ,
5: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
7: अस्सलामु अलैकुम, यक़बूदो वक़्फ़ पितोगी बजागा नफ़ीत आकाशवाणी करगिली का नाम प्रोचुपेपी प्रोग्राम शर्बा नचू जुबैस लखुरे नार्चू खतीजा यंग सरसी गंतानास का तू छिन्योत निचोखना जुना सलाम पु प्रोदमो चन सोशी यले प्रोग्राम आस नावे जुक्सुत खन अचिनो मोन का कफोन हुन फिससां शर्बा नचू नियंतंगार गाज जुक्सुना ननमित सनमित रगामो सिन्मो नंबो जुक्से दुक दुक कसता दिरी सी खतुस पुंगती वोल कॉटन डे स्कोला तिरगमना यंता सफो मास्टर हसन करना त्रिस्वी गानब चुगेद गचुस बसे नते जाई माहोलुन नते साफ सफाई जकपर कोशिश इन और दी

Ya eran hasta na zan chiginna ya gunche ginna goslak chiginna yanga ne yari mohalyang program set de program pe sabse pehla yani insani yati nazar po safai kya chin ki gatis majlis inqat ben na ki de majlis pos inqat be jagab chamje gatis saf sutra bahujaduk chamje saf sutra janduk bi chizatu nibara ngane yaris ehmiyat tang machin khas ka dare sidi namjang ngane yara safai nisbatla अलग अलग मैंने यहाँ चीज़ा तो मुहैया और सामान सकी गाज बसे मैंने यहाँ सफाई जप्पा लहसुन हल्का से दाँग यहाँ जन्ना चाहे मशीनरी से इन यहाँ ने यहाँ केमिकल से इन यहाँ ने यहाँ लकपाक फ्री कुंचा फ्री साबुन से गाँज जन्ना भी चीज़ा तो इस मैंने यहाँ यहाँ जन्ना सफाई भी रोल ला मैंने यहाँ मदद बाचिन की दे गंदा खली चीज़ा तो मैंने यहाँ साफ बसे साफ सुथरा माहौल चिक साफ सुथरा जिसम चिक साफ सुथरा सोसाइटी के मैंने यहाँ मुआइना बचिन जो नमजा चे मैंने सफाई तरफ अहमियत तंस की रंग रगोचा साफ सुथरा जा मैंने यदि मकसद बढ़िया सुन की घास घास घर चम साफ जान दुख घास घरी लख पक नमा चम चुख खुश दुख दुख साफ बसे हा इन दुचस्प सफाई दी सक पचा महदूद दोस्त बसे मैंने यारी मुआशरे नाचक या गंदा चीज़ा चक्स के पसंद की मैंने यारे रंग वो साफ जक्सना स्ट्रांग पो हम लोग आ जा

यानी स्वच्छ भारत अभियान शुरू भी की सबसे पहला यारा झरना की नानी यारे इंसान ने अम्बो अम्बो बाकी हैवानात जानदार की जात चाहे परिंदा चरिंदा इन अति लखसूस इन या यारा फल मेवा सब्जी इनकी दी चीजात नान यारा दुल लची बस खेरवा नींचा रुक स्वच्छ भारत अभियान तहत नान यारा खास कर नंग ना पाखाना चो शुरू बस जैसे इंसान नती हिंदुस्तान गाँव माओ में दिया थो मसूम इनकी ना फैसिलिटीज दी पाखाने फैसिलिटीज में चब सांबर संग दी चीजात कुन पाखाना भाषा ना नेरे माहौल के साम से असर बस दी गंदगी दी चीजात में स्वच्छ भारत अभियान दी इनिशिएटिव ले संगति देर के अपने वो स्वच्छ भारत अभियान रिलेटेड बस संगति गली कोची सक साब यक पमीना कुमाती मोहकमा गंगे के यहाँ जरना लस उस घोष तांस की हर मोहकमा दी दी जाओ ने साफ सुथरा बसे राय ऑफिस कर कर पो राय मोहल्ले कर कर पो दें सियासी समाजी मस सभी तंजीम गांव मार्शल से दी चीज आप उन साफ सुथरे मीना गा नियारे एडमिनिस्ट्रेशन इस डिस्ट्रिक्ट लेवल का यूटी लेवल का स्टेट लेवल का सेंट्रल लेवल दी चीज आप उन बारे मीन ला अवेयर बासुन की गा नियारे गा नियारा सा साफ दुचमिन बल्कि गा नियारी मुआशरा साफ जस्ट गा नियारी सेहत मीना यों में नमजी तुझ मीना मीन मीना नौरबला मीना जानदार परिंदा मीना साम चंगा ने यार साम साहब जाना द चीजा तुम गाने आ रहा इकोलॉजिकल बैलेंस का तुलूस नंगा ने यदि चरंदा परंदा सा गाने आ रहा थोंग मशीन अम्मा साहब सुत्रा मिलुश बस गाने यदि दर सीधी नमजा यारा जना गति इनसाइड जेर या बार्ड जेर या एनिमल जेर स्पेशियस मन मंगो दुनिया के ना स्टोर बसों संग इंसान की गलती वजह से का आदि चीजा तुम स्ट्रांग बसों खासकर छुका मत खराब बच्चा बस छियों तुम बलस बोले या सक कम छासों माहौल खराब बस गानी यारी डिस्ट्रिक्ट कारगिल स्ना गाने आना सुनते हो ना अलग अलग बी बियर भी गाना यार जिस बियर मौसम पे थों मशीन छू अब जाना दरे गाना यार चमा लखसूस कम बचा सफाई में जाक बसे दी बियर बियर भी ना कुले कुले कम छीन सुन की दरे गाने यार यंग दिश उर पे अगर गाने यार माहौल पो स्ना से सोचे साफ सुथरे का तो जग ना इन दी चीजा तुम कुले इसके तंग यार माहौल पे इकोलॉजिकल बैलेंस दो शास बसे निगा यार नत सदी सीधे ना थकलन जोशीन टेमे का चारपा खा हो शायद इन चीजा तुम सफाई के दार मदार मती खास कर शिस्कान स्कूल जर कॉलेज जर यार नजर नया मकतब सब दुनिया हफ्ते सर पर रे यानी इखलाकी तालीमी का मॉरल गति एजुकेशन से तंग खास कर दुनिया इखलाकी एजुकेशन खास कर सफाई रान रगो चामिन माहौलियात का तो साफ सुथरा यकसिन दि चीजा तो निका गति का तालीम दिलचस्प गनी यदि मना जरूरी वक्त की जरूरत इन दरसे कि साम से गनी यदि दि चीजा तो तरफ तवज्जह तंग से अयोम में नसुल निस्नान सपान मलब चुना निगा यार जामिन इनकी योम नमजा की गान यदी का दी चीजा तुम गाने जामिन छिन की अगर गाने यारिस खोस अखबा दी साफ सफाई चमच अहमियत चमच रहा फनखे चमच इन फनखे यहाँ चीजा तुम गाने यारिस छोसखा होनी थ्रू गाने यारी फून सकपा मलब चुना निगान यार जिम्मेदार इनकी आम अशिना चमच नच के पछाना या सफाई मिल बस चमच नोर बलंग या बेबू सकानी दी छो गुना आप गाने यार मुलविस छजा इन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू यहाँ जरना खास कर गति सिटी खर खोला म्यूनसिपल कमेटी तंगानी खुंदी मुहकमे लखतो टिका छान निमा खुंदी गति कोशिश भी तंग की रे माहौल पो साफ सुथरा जख पे अम्मा की गान एरस एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर गान दुकानदार बाजार उनता छाना कि गान एरस प्लास्टिक बन बुजुर्ग दी मुहिम नारा तंग से लोग हचिक सू अम्मा प्लास्टिक गानी बाजार पर खन सकपा खत्म मसू दि प्लास्टिक पो दस ऑफ मेटेरियल की गाँव वाने डस्ट भी नाता से मेटिसिन कप से दू मेटेरियल रा मेटेरियल छा लो मोमिक दूस वक्ल दिन मचता दि चीजा तुम गाने गखे तंग से मेटपा यह एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू खास कर दे पोल्यूशन थी घन गाड़ी गाड़ी पेट्रोल डीजल वाला समर्थन से गाने यारी गाड़ी सुले बाजार उन्हें या तुत्पाता मचे तंग खास कर दूस बसे गाने यारी सफाई का असर से तंग चाहे दो प्रोग्राम ही थ्रू या सेमिनार ही थ्रू गाज बस में पंगानी यारी माहौल पो सफा सुथरा चिका लुशमिन दो मिन में एडमिनिस्ट्रेशन खास कर सफाई मेंटेनेंस जख्म मीना माहौल सफाई बरकरार जख्म मीना ग्रीनरी प्लांटेशन बढ़ाई भी मीना गाने यारी तवज्जो उस पोशन की गाने यार शाम से प्लांटेशन गाने यारी जिंदगी हम बढ़ाई भाई इंचा तो यहाँ गाने यारी शाम से गाने यारी माहौल भी आब हवा शाम से साफ जख पाए इंचा तो यहाँ गाने यारी देरिस दी नमजंग माहौल गर्द गुबार से दना वजूहत पूछी
دی چیزات نکای ایڈمنسٹریشن اس صفائی کا فکر بس غور و فکر بس

0: Sherbana chugni pyadarinti di program palayanan chit pin programa sir tangkhan pin min Khadija Banu yanti programi producer pin min Gulzar Hussain. Mere mein vikanga chas Akashwani Kargil.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और उसके 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 साल में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को एक विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि अगर पश्चिम एशिया में संकट पैदा न होता तो अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देशों में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 साल बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार GST व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बगैर अनुमति के प्रवेश के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी को बढ़ावा देना होना चाहिए। हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगी तो इसका इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का लोकार्पण भी किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेरनिहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केंसो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज

0: Ahí es un...
1: Mirimayu Don FM Chanalika, Ngacha Sakashwani Kargilna Zrinchiot.
2: Comprimion, ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
4: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ,
3: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, इसलिए
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
6: PLI है ना?
7: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in
8: पर। चैंपियन नहीं आए अब तक।
9: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
10: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
11: बिल हो रहा है।
10: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
12: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग

0: बुकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनी, चौकन्ने रहें।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: क्या हुआ अबू?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: कोई डर खौफ ना करे अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तीन महीने में पैसे डबल?
8: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
7: क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ
8: और कल होगा भी नहीं।
9: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
10: ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं।
9: और RBI कहता है, अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे।
11: और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के
9: और फास्ट बोलिंग से भी। RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहे।
12: खो गया इंतजाम।
13: किसका?
12: गुड्डी की फीस का।
13: दिखा, 20,000 का कर्ज फौरन। जानती हो कौन दे रहा है, सूद कितना है? कर्ज बाजाब्ता तस्लीम शुदा अदारों से ही ले, और उतना जितनी जरूरत हो, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, तनख्वाह एडवांस में भेजी है।
6: RBI कहता है,
14: सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।
15: Medium Ayudan FM Channel Kadua Kashfani Gargilin, Kasta Tata Khani Tsegang Eskorla, Muhammad Ali Khani Kanapes Pasper Agentis Yan Musad.
16: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
17: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
18: बस यही पूछो, Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
16: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
18: आपका साइबर रक्षक।
19: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
20: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
21: प्रोग्राम खानुन दुनपा फ्रोचुक्स खान किस्त निस्कोयंग ठाठा खानी हसबना सभी स्कोर दुना गिलगित ना योंसे मोजे कुक्षो आबाद छे स्कोर पुना ख्वाइस गगा युलुन सुक्षुक्स दी स्कोर यंग सल्पो नयंबो मौलवी हशमतुल्ला खान लखनवी ब्रिसियत खन शुकबू मुख्तसर तारीख जम्मू कश्मीरी नंगजोंस यन तंग सकपास परारिक लेपचुक्स पिन दिरिंग दिया शुकबियां ना तारीख सोत चिकतन पश्क्यूमी योगा ठराखानी हुकूमत पे स्कोरियंग यंग स्पेरारिक लेपचुपी फ्रालुक्स बेत युरबल तगा दरे युद्धखानी खंडुर खर रग्यालसार चोसे रग्यापुना ठराखाने सुरु पश्क्यूम दुना सिंधी रग्यमसुए छनी इलाका गंगमा खुरी हुकूमत योगा क्योंसुक दी इलाकाउन गंगमा खुरी हुकूमत योगा क्योंसपी लयुक पेका ठाठा खानिस ट्रिस्पोन फ्योक्सला छे स्तप बसुक ट्रिस्पोन ला छतना लमना कारगिल बरू मेंजीर गले खोंग ट्रिस्पोन ला लिपसुक देर उसमेत ना शरारत बखन म्यूनी गौनर दुंगसुक ठाठा खानिस सिम्योक हर सिक्सुक गोमा दरी आबादिया यर्ग्यस क्षोंग से रग्यम्चुई थमा छकपा खेरसुक

0: Дэрэнтэс Гулам Мэхди Качиг нарсан мэсвэт хэгэн инжиэт бин. Мэдэм айвдуна эпэм чанали кадью Акашвани Каргилин Каста программэн тэз ньян мазэ дачи нумуни пья программа цир танкан бин. Захарабану мир.
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
4: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
5: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
6: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए। ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
4: वाओ,
5: स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शबीरुज़्ज़मा। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम के अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल। मुल्की और आलमी सतह के लीडरों की तरफ से नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद। वजीराला के हाथों गिंदन स्टेडियम राजबाग में जायदस 30 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स सहूलियात का इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में शमसी तवानाई को फरोग देने के लिए अब तक जायदस 3,57,00,00,000 रुपए की सब्सिडी फराहम। और अलमदार कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 9 अक्टूबर को पोशाक बंदी की तकरीब आज मुनक्किद। अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत में अपने 25 साल आज मुकम्मल किए हैं। 2001 में आज ही के दिन उन्होंने गुजरात के वजीर आला की हैसियत से अवामी जिंदगी का अपना सफर शुरू किया था और वो साल 2014 में मुल्क के वजीर आजम बने। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का हदफ जरूर हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि दफा 370 हो या नक्सलवाद, उनकी सरकार ने मुल्क को दोनों मसाइल से छुटकारा दिलाया है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: बीजेपी के सदर नितिन नबीन ने वजीर आजम की 25 साल अवामी खिदमत को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान मुल्क की आला कयादत के साथ साथ कई आलमी लीडरों ने भी नरेंद्र मोदी को इस अहम संग मेल पर दिल्ली मुबारकबाद पेश की है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आजम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि मोदी ने इस मुद्दत के दौरान प्रधान सेवक के तौर काम करके मुल्क को तरक्की की एक नई डगर पर गामजन कराने में अहम रोल अदा किया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वजीर आला से वजीर आजम तक के सफर के दौरान नरेंद्र मोदी ने नौजवानों की तरक्की, खवातीन की बाइख्तियारी, गरीबों की बहबूद और समाज के हर तबके की तरक्की को आला तरजीह दी है। दरी असना मरकजी काबिना ने भी नरेंद्र मोदी को अवामी खिदमत के तई 25 साल मुकम्मल करने पर मुबारकबाद देते हुए एक करारदाद मंजूर की। वजीर आजम के इन 25 वर्षों के सफर की कामयाबी जन सेवा से देश सेवा के उनके जज्बे से वाजह हो जाती है। इस सिलसिले में हमारी खसूसी सीरीज के तहत समाप्त करें लेबर कोड्स 2025 से मुतल्लिक हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट।
2: मुल्क में मजदूरों के हकूक, उजरत और समाजी तहफ़ को मजीद मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड्स नाफिज किए हैं। इन कवानीन के जरिए 29 मरकजी मजदूर कवानीन को 4 जामिया कवानीन में शामिल किया गया है। लेबर कोड्स का बुनियादी मकसद मेहनत कशों के लिए कम अज कम उजरत, वक्त पर तनख्वाह, बेहतर काम के हालात और समाजी तहफ़ को यकीनी बनाना है। मुलाजमीन को तकर्री नामा देना लाजमी बनाया गया है। आम लोगों के लिए इन कवानीन का फायदा उस सूरत में सामने आ सकता है जब ज्यादा से ज्यादा मेहनत कशों को मुनासिब उजरत, महफूज काम की जगह, रोजगार से मुतलिक वाज़ह दस्तावेजात और समाजी तहफ्फुज हासिल हो। जनसेवा से देश सेवा का पैगाम यही है कि मुल्क की तरक्की में मजदूरों का किरदार बुनियादी है। लेबर कोड्स 2025

0: 25 एक ऐसा कदम है जिसका मकसद मेहनत को इज्जत, मजदूर को तहफ्फुज और रोजगार को ज्यादा मुनज्जम बनाना है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के लिए नूरुल ऐन इशरत के साथ मैं महमूद अहमद खान।
1: प्रदेश बीजेपी के एहतमाम से आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में सेवा ज्योति यात्रा और विकसित भारत संकल्प सभाओं का एहतमाम किया गया। जम्मू में मुनक्कदा एक तकरीब की सदारत करते हुए पार्टी के प्रदेश सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने कहा कि यह महज तंजीमी या सियासी प्रोग्राम नहीं है बल्कि वजीर आजम नरेन्द्र मोदी के गुजशत 25 वर्षों की अवामी खिदमत का एतराब भी है। इन प्रोग्रामों में असम्बली में हिजब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा और दीगर कई लीडरों ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से आज लोकभवन श्रीनगर में कई वफूद ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई तरक्याती और समाजी मामलों पर तबादला ख्याल हुआ। एलजी से मुलाकात करने वालों में म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला के साबिक सदर उमर ककरू, जेएनके हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड वीवर्स एसोसिएशन के सदर गुलाम जिलानी जरगर की सरबराही में एक वफद, सेव शारदा कमेटी के चेयरमैन और ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के सदर रविन्द्र पंडिता और पश्मीना एंटरप्रेन्योर्स मेकर्स एंड आर्टसन्स फाउंडेशन के सदर तारिक डार की कयादत में एक वफद शामिल थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गिनुन स्टेडियम राजबाग श्रीनगर में कायम किए गए वर्ल्ड क्लास खेल ढांचे और सहूलियात का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट पर 30 करोड़ रुपए से जायद की रकम सर्फ की गई है। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आला ने कहा कि इन सहूलियात से आबी खेलों और जिमनास्टिक्स को जमीनी सतह पर मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा, वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और एमएलए लालचौक एहसान परदेसी के अलावा कई दीगर हुकाम भी मौजूद थे। इस दौरान 21वीं जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने आज श्रीनगर में वजीर आला से मुलाकात की। इस चैंपियनशिप की मेजबानी जम्मू कश्मीर कर रहा है जिसमें 24 रियासतों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के खेल मुकाबलों से खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका मिलता है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। तालीम की वजीर सकीना इतू ने मयारी तर्ज तालीम को फरोग देने के साथ साथ नौजवानों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत देने पर भी जोर दिया है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू ने खबर दी है कि आज कुलगाम जिले के दमहाल हांजीपुरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फ्रॉम कैंपस टू कैरियर के मौजू पर मुनक्कद किए गए एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सकीना इतू ने तालिबे इल्मों पर जोर दिया कि वो अपना मुस्तकबिल रोशन बनाने के लिए किसी भी सतह पर दस्तियाब तालीमी और तरक्याती मौकों से इस्तेफादा करें। बाद में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर से बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: हम सबकी कोशिश है कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया जाए और सिर्फ हमें ये डिग्रियां लेके हासिल नहीं करनी है कि हाँ हमने जी डिग्री ले ली और उसके लिए सिर्फ बस जॉब कब मिलेगा वो नहीं, हमें जो बच्चे हैं उनके साथ साथ डिग्रियों के साथ साथ उनका जो स्किल है उसको भी कॉलेज में हासिल कर सके। जैसे आपने देखा म्यूजिक में कितना हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह हम चाहते हैं सब्जेक्ट्स जो हैं हॉर्टिकल्चर हो टूरिज्म हो ताकि बच्चे उन सब्जेक्ट्स को पढ़े, उनमें बहुत ज्यादा स्कोप है, अपने जॉब खुद क्रिएट करें और लोगों को भी जॉब दें।
1: चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में शमसी तवानाई को फरोग देने और सोलराइजेशन की अमलावरी में हायल रुकावटों को दूर करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में मुनक्कदा अफसरों की एक मीटिंग में बताया गया कि इस स्कीम से इस्तीफादा करने वाले अफराद के बैंक खातों में अब तक 3 अरब 44 करोड़ रूपये बतौरी सेंट्रल सब्सिडी और 13 करोड़ रूपये बतौरी यूटी सब्सिडी मुंतकिल किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने इस स्कीम की मौसर अमलावरी के लिए मुख्तलिफ महकमों और अमलावरी एजेंसियों के दरमियान करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर संजीव वर्मा ने कहा है कि 10 अक्टूबर शनिचरवार और 11 अक्टूबर इतवार को पूरी यूटी में खसूसी जामे वोटर इंदराज मुहिम चलाई जाएगी। आज जम्मू में मुतलिक अफसरों की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद हर अहल वोटर का नाम वोटर फहरिस्त में दर्ज कराना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर में यकसां सिविल कोड नाफिज न करने के वजीर आला उमर अब्दुल्ला के ऐलान का खैर मकदम किया है। एक बयान में मौसूफ ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रोजे अव्वल से ही जम्मू कश्मीर के अवाम के हकूक का तहफ्फुज करती आई है। अलमदार कश्मीर हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 9 अक्टूबर बरोज जुम्मा अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। हमारे बड़गाम के नुमाइंदे शौकत शाह के मुताबिक आज उनके आस्तान आलिया वाकल चरार शरीफ में پوشاک بندی کی تقریب منعقد ہوئی جس میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ زیارت شریف میں کل نماز عشاء رات 9:30 بجے ادا کی جائے گی، جس کے بعد وہاں شب بیداری کی روح

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समय नादाब, पेश है तबसरा। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के तारीखी कस्बे वादनगर में श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबा मोदी के हाथ तीसरा बच्चा पैदा होता है। शायद ही तब उस गुजराती खानदान ने यह सोचा होगा कि एक दिन उनका यह बेटा पहले वजीर आला गुजरात और उसके बाद वजीर आजम हिंद बनेगा, और शायद ही ये उनके ख्याल में कभी आया होगा कि उनका बेटा मुल्क की सरबराही में रिकॉर्ड कायम करेगा। आज उनके उसी बेटे को तमाम दुनिया नरेन्द्र मोदी के नाम से जानती है और दुनिया के चोटी के सियासी लीडरों में उनका शुमार होता है। आज ही के दिन 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वजीर आला का ओहदा संभाला था, यानी आज तक उन्होंने अपनी अवामी खिदमात के 25 शानदार बरस पूरे किए। उनकी अवामी खिदमात पर नजर डालने से कबल हम नरेंद्र मोदी के बचपन, इब्तदाई जिंदगी वगैरह के बारे में मुख्तसर गुफ्तगु करते हैं। अपने आबाई कस्बे में ही इब्तदाई तालीम हासिल करते हुए जनाब मोदी स्कूल के दिनों में अवामी तकरीरों, मुबाहिसों और समाजी सरगर्मियों में दिलचस्पी लेते थे। साथ ही में वो नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी से भी वाबस्ता रहे। अपनी जवानी में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के साथ जुड़ गए। रजाकार के तौर पर काम करने के बाद उन्होंने तंजीमी जिम्मेदारियां भी संभाली। आरएसएस के साथ वाबस्तगी से वो समाजी खिदमत, तंजीमी नज्म जब्त और अवामी तहरीक से मुतारिफ हुए। नरेंद्र मोदी ने अपनी जवानी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का सफर किया और ऐसा तजुर्बा हासिल किया जो आगे चलकर उनके बहुत काम आया। अपनी जवानी में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के सकाफती और समाजी रिवायात के बारे में जानकारी और तजुर्बे ने उनको बतौर वजीर आला के और बाद अज़ां वजीर आज़म के सियासी कैरियर में खास फायदा पहुंचाया। 25 साल तक नरेंद्र मोदी का अवामी खिदमत का यह सफर गुजरात की इंतजामिया से शुरू हुआ और आज दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की मुसलसल क्यादत तक जारी है। एक चौथाई सदी का यह सफर अहम पॉलिसी इकदाम, इदारा जाती स्कीमों और प्रोग्रामों, फलाह बहबूद, बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए एक यादगार दौर है। 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आए तबाहकुन कच्छ जलजले, खुश्कसाली और शदीद तूफान के बाद के चैलेंजों का बखूबी सामना करने के लिए गुजरात की कयादत की। मई 2014 तक गुजरात के वजीर आला के बतौर उन्होंने रियासत को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचाया और तरक्की के इस तरीकेकार को अब गुजरात मॉडल के तौर पर जाना जाता है। बतौर वजीर आला उन्होंने तरक्की, टेक्नोलॉजी से चलने वाली इंतजामिया और हुकूमत, शहरियों के साथ बराह रास्त ताल्लुक और दीगर इख्तराई इकदाम पर जोर दिया और इसमें हासिल किए गए तजुर्बे को उन्होंने बाद में कौमी सतह पर बखूबी आजमाया और तमाम मुल्क के अवाम, खासकर गरीब तबका मुस्तफीद हुए। बतौर वजीर आला और अपनी पहली हुकूमत में उन्होंने सफाई सुथराई, देहात तक बिजली की रसाई, मुफलिस अफराद की गैस तक रसाई, अवाम के पसमानदा तबकात की मालियाती सरगर्मियों में शमूलियत, डिजिटल गवर्नेंस, सेहत और बुनियादी ढांचे की मजबूती पर अजहद जोर दिया। सफाई सुथराई की तहरीक मुल्क भर में मकबूल हुई। उज्ज्वला योजना से मुफलिस घरानों में मुफ्त एलपीजी पहुंचाया गया और जनधन योजना से हमारी खवातीन की बैंकों तक रसाई मुमकिन हो सकी। इसी दौरे हुकूमत के दौरान जीएसटी की शुरुआत की गई। इससे बिलवास्ता यानी इनडायरेक्ट टैक्स के पेचीदा ढांचे को मुल्क घीर निजाम से बदल दिया गया और आगे चलकर जीएसटी मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करने लगा। इससे डबल टैक्सेशन खत्म हुई, चोरी को बड़ी हद तक रोका गया और शफाफ माली अदायगियों पर जोर दिया गया। नरेंद्र मोदी के 25 साल इस हुकूमत में इलाज मुआलजा और सरकारी स्कीमों और प्रोग्रामों को आखिर तक, यानी जिस शहरी या शख्स के लिए वो स्कीम या प्रोग्राम बना है का इस्तीफादा उस तक पहुंचाने को यकीनी बनाया गया और इसमें बहुत हद तक कामयाबी भी हासिल हुई। आयुष्मान भारत ने अवामी सतह पर तआवुन याफ्ता हेल्थ इंश्योरेंस तक रसाई को बढ़ाया और एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क के 60 करोड़ अफराद को इस स्कीम के दायरे में लाया गया है। बहसत वजीर आला और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से अमलाए गए फलाही प्रोग्राम न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी

नरेंद्र कुमार सानू अल्कल्पनिक दोना कविता कृष्णमूर्ति कना कुछ कुछ होता है फिल्मी दिल हुआ नंचित पिन कस्ता दिखे अपना सुगविंदर सिंह ना सुनीति चौहान कना दिल हुआ मजद फिल्मी मिंग पोइन मुझसे शादी करोगी।

0: Force, we now bring you a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal.
1: भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रस्तुत है भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश।
2: नमस्कार, भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सारे वायु योद्धाओं की ओर से मैं सभी देशवासियों को नमन करता हूँ। वायुसेना दिवस हमारी उस गौरवमयी यात्रा का उत्सव है जो अटूट निष्ठा, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की नींव पर रची गई है। सन 1932 में मात्र 4 वापिती विमानों से उड़ान भरने वाली हमारी वायुसेना आज एक अत्यंत सक्षम, नेटवर्क सेंट्रिक और बहुआयामी फोर्स बन चुकी है। आज की दुनिया अस्थिर, अनिश्चित और जटिल दौर से गुजर रही है। हितों और परिस्थितियों के लगातार बदलने के इस माहौल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष उभर रहे हैं। इन संघर्षों में हमने देखा है कि वायु शक्ति राष्ट्र के हितों की रक्षा करने का एक प्रमुख साधन है। देश की वायु शक्ति का प्राथमिक माध्यम होने के नाते भारतीय वायुसेना सतर्कता और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर रीअफर्म द पिवोटल पावर ऑफ इंटीग्रेटेड एयर ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेटिंग आर कैपेबिलिटी and capacity to defend our sovereignty. Through major milestones this year, including exercise Vayu Shakti, various bilateral exercises, Dronathon, and the ongoing historic multilateral air exercise Tarang Shakti, we are actively testing our combat readiness and rapidly absorbing niche technologies into our operational plans. Apni marak shamta ke alawa, Bharatiya Vayu Sena ne sankat ke samay mein हमेशा आगे बढ़कर देश और मानवता की सेवा की है। चाहे देश के विभिन्न प्रदेशों में आई भयंकर बाढ़ के दौरान नागरिकों की सहायता हो या जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाना हो, हमारे वायु योद्धाओं ने हमेशा कौशल और साहस का परिचय दिया है। हमारी यह प्रतिबद्धता हमारी सीमाओं तक सीमित नहीं है। नेपाल और युगांडा से लेकर वेनेजुएला, फिलीपींस, मेडागास्कर, थाईलैंड, क्यूबा और जमैका तक हमारी वायुसेना ने HADR मिशनों के माध्यम से सेवा के इसी संकल्प को निरंतर आगे बढ़ाया है, जो सेवा परमो धर्म एवं वसुधैव कुटुंबकम की सच्ची भावनाओं को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अंकुर ट्रेनर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, अस्त्र आकाश तथा ब्रह्मोस जैसी स्वदेशी प्रणालियां इसी संकल्प का प्रमाण है। आत्मनिर्भरता की इस नींव पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को तेजी से अपनाना भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी फाइंडिंग इट्स वे इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर फंक्शनिंग। आवर विजन इज टू बिल्ड एन AI ऑगमेंटेड फोर्स वेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स अस बट ह्यूमंस रिमेन इन कमांड। आवर रोल्स एंड टास्क naturally take us beyond the confines of Earth's atmosphere, as space is a natural extension of the air domain. Our deepening partnership with ISRO, including our contribution to Gaganyaan mission, reflects this commitment. These capabilities form an integral part of our vision for 2047. Technology is only an enabler. The foundation of decisive victory has always been in the unity of purpose. Modern wars are not won by the strength of a single service, but through the combined strength of the entire nation. For Indian Air Force, jointness is the only way forward. Our endeavor is to ensure that the reach, speed, and precision of air power are fully harnessed so that its effects are felt across every dimension of the battle space. Is avsar par main apne aadarniya air veterans ko naman karta hu. आपकी दूरदृष्टि, समर्पण और मार्गदर्शी नेतृत्व ने ही इस सशक्त भारतीय वायुसेना की नींव रखी है, जो आज राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है। साथ ही मैं अमर शहीदों

0: को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने कर्तव्य के मार्ग पर अपनी प्राणों की आहुति देकर तिरंगे का मान रखा. आई ऑल्सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्नॉलेज दैट थ्रू एवरी चैलेंज द अनवेवरिंग सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ऑफ आर फेलो सिटीजन्स हैव बीन अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द इंडियन एयरफोर्स. देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और आप सभी का आशीर्वाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है. अंत में हम समस्त वायु योद्धा भारतीय वायुसेना अचूक अभेद एवं सटीक की अवधारणा का स्मरण करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि राष्ट्र की रक्षा उसकी संप्रभुता और अखंडता के लिए हम सदैव समर्पित रहेंगे तथा अपने आदर्श वाक्य नभ स्पृशम दीप्तम पर अडिग रहेंगे. जय हिंद.
1: On the eve of the 94th anniversary of Indian Air Force, you were listening to a message by the Chief of Air Staff, Air Chief Marshal Amarpreet Singh, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal.
2: अभी आप भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल का संदेश सुन रहे थे. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र

जय हिंद फौजी भाइयों के लिए अपना मनपसंद प्रोग्राम लेकर इस वक्त आकाशवाणी करगिल से हम हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को हमारे ओर से खुलूस भरा आदाब और आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम पेश करते हैं। दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में आप चंद नए तर्ज के फिल्मी नगमे समाप्त करेंगे।

फौजी भाई अपना मनपसंद प्रोग्राम इस वक्त आकाशवाणी करगिल से समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों आपके ये प्रोग्राम मीडियम वेव 1584 किलो हर्ट्ज, मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज, FM

0: शहर 1 मेगाहर्ट्ज़ और साथ ही न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों आप सुनते रहिए प्रोग्राम आकाशवाणी कारगिल।
1: तीन महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
1: क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ
2: और कल होगा भी नहीं।
3: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं।
3: और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे।
2: और फास्ट रिटर्न्स से महफूज रह के
3: और फास्ट बोलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें।
1: 3 महीने में पैसे डबल,
2: वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी।
1: क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ
2: और कल होगा भी नहीं।
3: तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है?
4: ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं।
3: और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे।
2: और फास्ट रिटर्न्स से महफूज रह के
3: और फास्ट बोलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
6: फंसी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: कम सूद पर लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह,
9: फंसा।
7: अनजान ऐप से बचें।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: दस लाख की लॉटरी मेरे लिए, वाओ,
9: फंसी।
7: फर्जी ऑफर से होशियार।
6: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
10: कम वक्त में ज्यादा मुनाफा, उसे क्लिक पर, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: हेलो
12: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
11: फिर से?
12: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
13: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
11: सर इतने कहाँ से?
13: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: क्या हुआ अबू?
11: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
12: अरे
11: काट दिया।
5: कोई डर खौफ ना करे अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
11: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहे। उन्हें कोई पैसे ना भेजे, बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करें। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे
11: तो पैसे गवाओगे।
7: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
9: फंसी।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
14: खो गया इंतजाम।
15: किसका?
14: गुड्डी की फीस का।
15: दिखा, 20,000 का कर्ज फौरन। जानती हो कौन दे रहा है, सूद कितना है? कर्ज बाजाब्ता तस्लीम शुदा अदारों से ही ले, और उतना जितनी जरूरत हो, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, तनख्वाह एडवांस में भेजी है।
7: आरबीआई कहता है
16: सही माली बर्ताव करे आपका बचाव।

अभी आपने अलका याग्निक को सुना। फिल्म थी राजा हिंदुस्तानी। ये नगमा लिखा था समीर ने और मौसीकी तरतीब दी थी नदीम शवन ने। दोस्तों, प्रोग्राम की आखिरी नज़र दीजिए, समाप्त करें गुलाम अली की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम है बेवफा।

दोस्तों इसी नगमे के साथ ही फौजी भाइयों के लिए हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त भी अख्तिताम को पहुंचा। इस बीच हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। दोस्तों आप जहां भी रहे हमेशा खुश रहिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जय

अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए। हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब है। सामिन, अभी खबरों का वक्त हुआ चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और

0: तो खबरनामा रिले करेंगे रिले का इंतजार कीजिए।
1: लॉग इन बाजत इंडिया पोस्ट डॉट जो।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
3: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
2: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
3: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
2: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
4: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशो

0: भूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: It's so important. We want to bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid.

0: collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
1: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि ISA प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
2: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही से मायने में दिखलाता है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में ISA का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
5: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
4: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
3: भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। RBI ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और EFTA के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सोआई को देने की घोषणा की है। और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में होंगे भारतीय दल के ध्वज।

0: नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। फ्रांस और जापान के साइंसदानों की जोड़ी हेनरी बी कैगन और केन्सो साय ने मोलिक्यूलर अदम तवाजुन के राज को हल करने पर 2026 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम जीता है। और पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल इस माह के आखिर में जापान में शुरू होने वाले एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय दस्ते के परचमबरदार होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब नजरिया साज पॉलिसियों और मेहनत के जरिए जरूर पूरा करेगा। आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी तमाम शहरियों के मसाइल के हल पर मरकूज है।
1: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
0: वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त था जब भारत का तस्किरा कमजोर पॉलिसी के लिए किया जाता था, लेकिन अब दुनिया भारत की बढ़ती हुई ताकत और मुश्किलात का मुकाबला करने की उसकी सलाहियत के बारे में बात कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 12 बरस के दौरान हालात में यकसर तब्दीली आई है। जनाब मोदी ने कहा कि पहले भारत की दरामदात बढ़ाने की कोशिशें की जाती थी, जबकि आज भारत बरामदात के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस तरह की तब्दीली उसी वक्त मुमकिन होती है जब नीयत दुरुस्त और वाजे हो, नीज पॉलिसियां बेहतर तौर पर वजा की गई हों।
1: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है, और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है, और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है, और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि कैसे बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA जैसी पहलों के जरिए इस विजन पर अमल दरामद किया जा रहा है।
2: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में COP21 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA का मुश्तरका तौर से आगाज किया था। यह आलमी बैन हुकूमती तंजीम तवानाई तक रसाई, तवानाई की सलामती और पायदार तरक्की के लिए शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए वक्फ है। ISA शमसी तवानाई से मुतालिक बैनुल अक़वामी इश्तराक के लिए एक आलमी प्लेटफार्म बन चुका है, जिसमें आज 129 रुकन ममालिक शामिल हैं। पेरिस में COP21 के दौरान बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद के आगाज की मुश्तरका तौर पर सदारत करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह इत्तेहाद शमसी तवानाई को किफायती, काबिल इन्हिसार और काबिल रसाई बनाने पर तवज्जो मरकूज करता है।
1: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
2: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद के डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना ने कहा कि ISA वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन की अक्कासी करता है और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, रोजगार और तवानाई की सलामती के लिए मुल्कों को यकजा करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। भारत की क्यादत में ISA का मकसद सिर्फ तवानाई तक रसाई को बढ़ाना नहीं, बल्कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में नुमाया कमी लाना भी है। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने को एक सुनहरा और तारीखी दिन करार दिया। आज गुड़गांव में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम

जीएसएमए के बोर्ड मेंबरान से बातचीत की। जीएसएमए एक आलमी तंजीम है जो मोबाइल के इको निजाम को यकजा करती है, मोबाइल ऑपरेटर्स और मोबाइल इको निजाम और इससे मुंसलिक सनअतों की तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी करती है। बातचीत के दौरान वजीर आजम ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक को सबकी शमूलियत और पायदार तरक्की का एक आला बनना होगा। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते हुए चैलेंज का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस मसले के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी हल तलाश करने की जरूरत है। साल 2026 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम फ्रांस के केमिस्ट हेनरी बी कैगिन और जापानी केमिस्ट केंसो साई को नामियाती केमिस्ट्री में गैर खत्ती असरात और ऑटोकैटेलिसिस से मुतालिक उनकी अहम दरियाफ्तों के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आज कहा कि कैगिन और साई ने एक सदी पुराने इस मुअम्मे को हल किया है कि मॉलिक्यूलर अदम तवाजुन, जिसे होमो काइरैलिटी कहा जाता है, फितरत में खुद ब खुद किस तरह पैदा हो सकता है। नोबेल कमेटी के मुताबिक केमिस्ट रिवायती तौर पर तजर्बागाह में मॉलिक्यूल्स की तैयारी के दौरान एक दूसरे के आईने में नजर आने वाली शक्लों यानी अक्स नुमा मॉलिक्यूल्स की बराबर मकदार हासिल करते हैं। दोनों नोबेल इनाम याफ्ता अफराद 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर की इनामी रकम मुश्तरका तौर पर हासिल करेंगे। भारत के बराह रास्त नशर होने वाली तकारीब के शोबे में गुज़श्ता साल 44% से जायद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुज़श्ता साल मुल्क भर में ऐसी 34,000 तकारीब मुनक़िद की गई। इत्तला'आत और नशरियात की वजारत में सेक्रेटरी चंचल कुमार ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा बराह रास्त नशर होने वाली तकारीब की तरक्की से मुतालिक सेल की 5वीं मीटिंग में अपने खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये शोबा 1 करोड़ से जायद अफराद के रोजगार का जरिया है। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक और तेज हवाओं के चलने का इम्कान है। पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियन पैरागेम्स की इफ्तिताही तकरीब में परचमबरदार की हैसियत से भारतीय खिलाड़ियों की कयादत करेंगे। एशियन पैरागेम्स जापान के आईची नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक मुनक़िद होंगे। इसमें एशिया भर से खिलाड़ी खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने साल 2014 से 2023 के दरमियान सोने के 2 और कांसे के 4 तमगों समेत कुल 6 एशियन पैरागेम्स तमगे जीते हैं। और पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने 2018 से 2023 के दरमियान चांदी का 1 और कांसे का 1 तमगा समेत कुल 2 एशियन पैरागेम्स तमगे हासिल किए हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नजरिया साज पॉलिसियों और सख्त मेहनत के जरिए साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब जरूर पूरा करेगा। उन्होंने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। भारत ने बहरे अस्वद खित्ते में कमर्शियल जहाजरानी पर होने वाले हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि वो कयाम अमन के लिए रूस और यूक्रेन के साथ राबते में है। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने में तावुन के लिए भारत की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। आरबीआई ने मौजूदा माली बरस के लिए जीडीपी की शरह तरक्की 7.1% रहने का तखमीना लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। और पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल इस माह के आखिर में जापान में शुरू होने वाले एशियाई पैरागेम्स में भारतीय दस्ते के परचम बरदार होंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: होशियार।
1: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
4: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए।
1: आरबीआई कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: 슐레 쿠르쿠르 둘레차타 요만 데잖아 시리베 타치리 제르살라 콜레빈 누구 마시 데카네 티켓 피챘테는 도데 풀 투포 바슬레빈 누구야 데잖아 카스토알 바슬레빈 누구 데잖아 카스토알 쪽 람페니 투야
1: छाना पानी खारी लुंगमा गतान पाडा लस्ता छ छाना रे देवनु को रियो ता या खायो ता
0: छ मन वर नेल तिन मन जंगल ठुप ठार दुगु या जंगल मर पस्टवर पाडा ला जंगल पानी खारी लुंगमा वर न छाना जंगल दुगु या
1: तने दे कना या देवनु मजुरी बसना ngati या दिस मोस दयान दिर लोक्स
0: मोस ला ngati दिख लोक्स ओ तिन या
1: यां
0: डुले रे या जो पाडा न ओ तिन ताजे मन ले लन को सिसु ता न मम छ तिन त को मन दो नमाज न सजे परो परो गर ngata शिन थोपसा या बहो थोपसा या छी थोपसा बन दु पनेल मिनु
1: तारे रेफरे ना मंगा ग्रुप या डुल छ त
0: मने गुरु बने सुमसुम जीवी ता हंडवाल बसे डुल न पयो या
1: मासे से
0: मिलन छु छु तोहर या मुडुले सों से ने कना जाय तिन या ngata जिकर छचन देतन गर्व पुज दर्शन गति युजुक पा खेल खोंगे जि मेट लेत
1: अच्छा
0: या ते युग नंग अच्छा या जिकर छचन ना निंग अच्छा कष्टवार दुखसिन कि चुलु जर कन डोरा पा ठिकदार बु कि चुलु जर नु दे लसन दुखसिन या मते देतन रेट बु दो मते चुंचे गुन ल 1.5 रुपया छो को सुन दो जवान गुन ल 2 रुपया मेट ला 5 रुपया मिस्त्री 5 रुपया मे छु देतन मन मे छु या देतन पेनि मन किस्तो सस्ता तु पेनि मिंगा तु या
1: बसेस दोंबे तु साइन सु पताना दि तु स्पु नाम चिंतना 1900 इना की राजा महाराजे तु सिस पेरा तंग से नागत
0: तु नते तनंग उमर पो 13 14 साल च मन मेट पिनु या दिसन चतना
1: ताना दि कंगति
0: देतना दे सु देतना बक्शीगोला मोहम्मद ते हुकूमत दे तु या
1: जम्मू कश्मीर
0: जम्मू कश्मीर बक्शीगोला मोहम्मद हुकूमत दे तु गाचा दे लसेंस से रोड देखना थलखाने सिंह जैसे युग नाचा फारिश घाट को जूने मना खोबस हुआ
1: घर दो
0: कष्टवाड़ ला खोबस देखना चाहे मना ना बीन सी उसमें या युग न मना देखा कौन सा उल्लू का माजून खेल लो या खेरे बक्शी रशीद उनसे जमानत तंग से ना पुलिस आप खुद तंग से थू या मैंने कुत्ता को जंगल आते सिंह जैसे ना जून मरो जो दे
1: तुक्षी का माना कुछ मिर्चा चुचा
0: तुक्षी तांगतां दुपि नंगते तना मारदुम ख्याम साक्या दिखाउस
1: पे ने नंग छचा दुक्सा
0: ने दुक्से न पो
1: छना गति पदमादे चना चिता बात पिने रे साक्या ता छु
0: कहता सो गति दिखे ओ तिन नास प्रो शदमा दोनम ब्रोजर कन गति टावजर सिंग गति ब्रोजर दे ओ ये दो तबे नु यो या बस हां दोन गति दे चना मन दे बन गुबी करम सा करम मुंदी दे समे तु दे तेरे अली न मुलाह की मन ता मे तु लबुक दर्शन गा चा दुरपो
1: हां दुरपो
0: या बस दो मन मे तु या दो अली हो तुने दे कन गता मति लु से थोमा हो तुने या मन लु से थोमा रुक से गते कोदरे ची थोमा या न रिना या थोमा शांस दे रे कन तें दे तो यो तें यो या बाकी
1: रिना रिसो या गति स्पर्सो दो सोसा यो
0: तें रिना रिसा कन तें यो ना से या मजबूर दर बुरसे कंटिन्यू या शिंग लामा या सियावा कंटिन्यू हुल तुपी के या दिस नंगा ता मन दिखना आगा ता या क्या था या चित यो ना मन तेल वेल ब्रास वाश कौन ना ता दिखने कर गिर चार वर्ष दु यो या
1: दिस न लम मि दुख तुपा
0: दिस न या स्टाल सलाम जी मन यो तुमे यो या
1: गाड़ी वाली
0: मन दिस न मन कर गिर गाड़ी यो मि दुख यो मन ले मि दुख मन कर गिर तुपा मन और गाचा बल्टी बाजार रस्ता उन जा से देख तो तीन हो या फुमा उमा न्यो से सवा न्यो से तांतीन हो या
1: जमा चमल चिंता न जासकर न करगी ला
0: जमा को मन ले मिनु को या मन मन ता परो परो मन के रस्ता सा मी छु सिं थपसा दुख पर से नु या
1: खेक चम से मत बिन खासकर पेंजलान गा चुको बसे यते से खतरात भी
0: पेंजला मन दुले छतरंगा ता मारिश अप्रैल मई नु गा खरज के चेन या जून जुलाई नु बाल न्यो ना छा न्यो ना ब्रश न्यो ना मन चीज तेल सतेल जतेल गामा अंगति दे नस पे खाना गुजारा बेन दुख तो या दे दे तने चम गोर में सिटोर
1: में तो चम में चम राशन वाशन जिग
0: दे चम में छुयो चम में छुयो
1: बिल्कुल
0: आ चम पाए होते तम था ना या को कन बाल न्यो तें छा न्यो तें
1: بلٹی
0: بازار من من میں چھری
1: چھزر
0: پوس بنیا گیا.